नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 14 अक्टूबर 2026 दिन बुधवार, अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:53 पर।

शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का भाव सहमति होने पर हिंसा और अपराध वृत्ति का अभाव होगा तथा हर तरफ मंगलमय वातावरण निर्मित होगा।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7। इसमें हम आपको पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनाते हैं। इस कार्यक्रम को पेश करेंगे आरजे किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन दिया भारत सोपोरी ने।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। दोस्तों, शब्दों से भरी दुनिया में कुछ आवाजें दिलों को छू जाती है और कुछ सुरों का जादू हमें यादों के सफर पर ले जाता है। आज का ये सफर उन्हीं सुरों के संग होगा जो कभी मुस्कान बनेंगे तो कभी आंखों में नमी लाएंगे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरने, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और पेश कर रही हूँ आज का कार्यक्रम सरगम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के गीतों का सिलसिला। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं प्रेम रो के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, जिसके बोल लिखे हैं आमिर कजालबश ने और संगीतकार है लक्ष्मीकांत खैरे।

लीजिए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म शोर का गाना, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपकी नजर पेश है फिल्म जुदाई से गाना, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और गाया है आशा भोसले ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म है सुहाग।

लीजिए आप सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, और जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

सभी श्रोताओं के लिए अगला गाना है आनंद बख्शी का लिखा हुआ है, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने, और फिल्म फर्ज का गाना है ये।

अगला नगमा है फिल्म असली नकली से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और जिसको संगीत दिया है हसरत जयपुरी ने, और उसके बोल लिखे हैं शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अगली पेशकश है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीतबद्ध किया हुआ गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म है सुहाग, और उसको अपनी आवाजों से सजाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

अब सुनते हैं राजेंद्र किशन का लिखा हुआ गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, जिसको संगीत दिया है शंकर जय किशन ने, और फिल्म है सच्चाई।

कार्यक्रम का अगला गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीतकार है खयाम, और फिल्म कभी कभी से लिया गया है।

कार्यक्रम का आखिरी गाना है फिल्म अजनबी से, जिसके संगीतकार है आरडी बर्मन, गीतकार है आनंद बख्शी और आवाजें दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

इसके साथ ही सरगम का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7, जो पुरानी हिंदी फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम था। पेश किया आरजे किरनी ने। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिट व निर्देशन दिया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
0: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सभी को मेरी नमस्कार। मैं आपकी रेडियो सखी नेहा धाकड़ लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई कहानी, जो हमें सिखाएगी कि हमें कभी भी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से। एक बहुत ही बड़े जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिस पर एक कौवा और एक कोयल दोनों अपने अपने घोंसले में रहते थे। एक रात उस जंगल में तेज आंधी चलने लगी। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में जंगल में जो भी था सब बर्बाद हो गया। अगले दिन कौवे और कोयल को अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तभी कोयल ने कौवे से कहा,
1: हम इतने प्यार से इस जंगल में रहते हैं, लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्यों ना जब मैं अंडा दूं तो तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटाना, और जब तुम अंडा दोगे तो मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी।
0: कौवे ने कोयल की बात पर सहमति जताई। संयोग से सबसे पहले कौवा अंडा दे देता है और कोयल उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेती है। फिर कोयल ने अंडा दिया। कौवा जैसे ही कोयल का अंडा खाने लगा तो कोयल ने उसे रोक दिया। कोयल ने कहा,
1: तुम्हारी चोंच साफ नहीं है, तुम इसे धोकर आओ फिर अंडा खाना।
0: भागकर कौवा नदी के किनारे गया और उसने नदी से कहा,
2: तुम मुझे पानी दो, मैं अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा।
0: नदी बोली,
1: ठीक है, पानी के लिए तुम एक बर्तन लेकर आओ।
0: अब कौवा जल्दी से कुम्हार के पास पहुंचा और उसने कुम्हार से कहा,
2: मुझे घड़ा दे दो, उसमें मैं पानी भरकर अपनी चोंच धोऊंगा और फिर कोयल का अंडा खाऊंगा।
0: कुम्हार ने कहा,
2: तुम मुझे मिट्टी लाकर दो, मैं तुम्हें बर्तन बनाकर दे देता हूँ।
0: यह सुनते ही कौवा धरती माँ से मिट्टी मांगने लगा। वो बोला,
2: माँ मुझे मिट्टी दो, इससे मैं बर्तन बनवाऊंगा और उस बर्तन में पानी भरकर अपनी चोंच साफ करूंगा, फिर अपनी भूख मिटाने के लिए कोयल का अंडा खाऊंगा।
0: धरती माँ बोली, मैं मिट्टी दे दूंगी, लेकिन तुम्हें खुरपी लानी होगी, उससे मैं मिट्टी खोदकर तुम्हें दूंगी। दौड़ते हुए कौवा लोहार के पास पहुँचा। उसने लोहार से कहा,
2: मुझे खुरपी दे दो, उससे मैं मिट्टी निकालकर कुम्हार को दूंगा और बर्तन लूंगा और फिर बर्तन में पानी भरूंगा और उस पानी से अपनी चोंच धोकर कोयल का अंडा खाऊंगा।
0: लोहार ने गरम गरम खुरपी कौवे को दे दी। जैसे ही कौवे ने उसे पकड़ा उसकी चोंच जल गई और कौवा तड़पते तड़पते वही

0: मर गया। तो इस तरह चतुराई से कोयल ने अपने अंडे को कौवे से बचा लिया। तो कौवे और कोयल की कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान हमारा खुद का ही होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपके पास भी कोई स्वरचित कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगे तो हम उसे अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010, 7056413010। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूँ। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार। FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो इतस्तक, हम सफर जिंदगी का, हम बाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज और एक लघु कथा लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, जिस लघु कथा का शीर्षक है दो पहिए। कॉलेज में सुखी वैवाहिक जीवन पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति और पत्नी शादी पर जोक सुना रहे हैं, हंस रहे हैं। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। सभी खुश हो गए। कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक विवाहित महिला को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर 20-25 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे हों। महिला ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधियों के नाम लिखे, दोस्तों, पड़ोसी और अपने सहकर्मियों के नाम लिखे। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने के लिए कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने कहा कि 5 नाम और मिटा दो। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के भी नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने 10 नाम और मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और उसके बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से 2 नाम और मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते, उसने अपने मम्मी पापा का नाम भी मिटा दिया। सभी लोग हैरान और शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब तो सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर अब बैठ जाओ। प्रोफेसर ने सबकी तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया, सभी मुंह लटका कर बैठे थे। प्रोफेसर ने उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोसकर इतना बड़ा किया, उनका नाम तक तुमने मिटा दिया। अरे, और तो और, अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया, अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है ना, तब तक मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति ही हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट्स ने तालियों की गूंज से उस लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल सही कहा, तुम और सभी के बिना तो रह सकती हो, पर अपने आधे अंग यानी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी उसका सबसे ज्यादा उसे अजीज होता है, इसलिए अपने जीवन साथी का सारा सम्मान करें, उसको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और स्वयं भी प्रसन्न रहें। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

حسن کی ہو مثال، ہو پونم کا چاند، زندگیوں کی ہو سحر، ہو ڈھلتی شب۔

समय की रफ्तार कभी थमेगी नहीं और ना ही जमीन और आसमान का मिलन होगा। जैसे चांद कभी धरती पे आ नहीं सकेगा या उतरेगा नहीं, वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

अब अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

हसरत के लम्हों में क्या कभी ख्वाबों की ताबीर होगी? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाब थे फीके फीके और तुमने रंग भर दिए। कैनवास पे उतारने की कोशिश भी की, पर रंग कच्चा था जो बिखर गया, लुप्त हो गया।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब। चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं, ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने गमों का और मेरी

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं पर रातें हैं शादाब, सन्नाटा पसरा है। गुप अंधेरे भी यहां बोलते हैं, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो, तोड़ दो अपनी चुप्पी, अपनी उदासी को। आज यहां इन बर्फीली हवाओं में पत्थर भी पिघलते हैं, यहां मेरे सब्र का पैमाना भी अब टूटा जा रहा है। कुछ कहो, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत। नमस्ते।

पेश है मिले जुले गीतों का ये खास कार्यक्रम। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। आदाब।

उंगली से इंद्रधनुषी बंटवारे की लकीरें खींच लेता हूँ, आसमां से नजरें मिलाता हूँ, चांद को निहारता हूँ, सुनसान राहों को तन्हा रातों में तकता रहता हूँ, चांदनी रातों में अपने ही साए से लिपट जाता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ, सच में मैं पागल हूँ, गुप अंधेरों में खुद के साथ सफर करता हूँ, भटके परिंदों की रहनुमाई करता हूँ।

रूपों की ताबीर हो, इंद्रधनुषी मौसमी बारिश हो, जिंदगियों में बहारों की बौछार हो, समय को ठहरने की इजाजत हो, चाहतों में चुंबक जैसी जुम्बिश हो। सांसों की गर्माहट में होंठों की कपकपाहट हो, इन कदमों की आहटों में पुनर्जन्म का एहसास हो, आशियानों में लगी आग हो, टूटे आईनों में बिखरती तस्वीरें हो, लेकिन सिर्फ तुम मेरे ख्वाबों में हो, मेरे ख्वाबों की ताबीर।

मौसम बदलते रहे पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम अभी लुप्त हो चुका है और दरियाओं की रवानी थम चुकी है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही शायद तुम लौट आओ मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए।

आंचल, भर देती है खुशियों से दामन, अपने साथ कहीं दूर तक ले जाती है, गगन के उस पार अपनी मुस्कुराती दुनिया में, जहां फरिश्ते राहों में सजदा करते हैं, जहां यकायक फूलों की बारिश होती है, जहां चांद सितारे हमारे पांव छूने में गुरेज नहीं करते हैं, जहां रूह रक्स करती है और जिस्म प्यार का इजहार।

अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। आदाब।

0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: पेश है कार्यक्रम बच्चों की बात। आज हम बात करेंगे सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल चंदपुरा अंबाला कैंट के बच्चों के साथ। कार्यक्रम के संचालन और प्रस्तुतकर्ता आरजे सेजल, निर्देशन भारत सोपोरी।
2: इस आवाज को सुनकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इस वक्त हैं हम बच्चों के बीच, और मौजूद हैं हम इस वक्त सरस्वती विद्या निकेतन चंदपुरा की क्लास 8 के साथ। और आज हम आपको याद करवाएंगे आपके स्कूल के दिन और जानेंगे कि बच्चों की क्या है सोच एजुकेशन, खेलकूद और टेक्नोलॉजी को लेकर। तो बचपन में जैसे हमें मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पूछा जाता था, शुरुआत हम उसी से करेंगे। और वो क्वेश्चन था कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं।
3: जी हाँ, तो अब इसी से शुरुआत करते हैं और करते हैं आगाज इस कार्यक्रम का।
4: मेरा नाम तनिष्का अर्दा है और मैं बड़े होके, मेरे पे दो ऑप्शन है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरा होटल मैनेजमेंट।
2: तो ये दो ऑप्शंस क्यों रखे हैं?
4: मेरा कोई इंस्पिरेशन नहीं है, पर होटल मैनेजमेंट कुकिंग मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। पर आज के जमाने में अब या बोलते हैं लोग कि लड़के कुकिंग नहीं कर सकते या उनको कुछ काम नहीं करने देते, तो कई लड़कों का सपना होता है कि कुकिंग करना, पर उसको दबा देते हैं। लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि लड़के ये नहीं काम कर सकते, लड़कियां ही कर सकती हैं।
2: तो आप कह रहे हैं कि जितनी इक्वालिटी गर्ल्स के लिए जरूरी है उतनी लड़कों के लिए भी जरूरी है।
4: हाँ जी।
2: तो आप अगर कुकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो इस टाइम आप कुकिंग करते हैं?
4: हाँ जी।
2: क्या डिश है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
4: मुझे बनाना पसंद है पास्ता, राइस, सैंडविचेस।
2: तो आपके पेरेंट्स का इसको लेकर क्या पर्सपेक्टिव है?
4: पेरेंट्स का प्रोस्पेक्टिव है कि पहले और पास जाओ 9th-10th के, फिर सोचना कि आपकी अभी और राय बदलेंगी। पर मुझे है कि मैंने होटल मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैकिंग में ही जाना।
2: तो हैकिंग में इंटरेस्ट कैसे है?
4: हैकिंग में इंटरेस्ट है, जैसे दो टाइप के हैकर होता है, ब्लैक हैकर और व्हाइट हैकर। ब्लैक हैकर होता है जैसे जो कंपनीज को हैक करता है, जैसे कि गलत काम करता है जो जेल में भी जा सकता है। व्हाइट हैकर होता है जो कंपनीज को प्रोटेक्ट करता है।
2: तो आपको क्या लगता है जो व्हाइट हैकर्स हैं, इन फ्यूचर इनकी हम कैसे हेल्प ले सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इनकी?
4: जैसे फ्यूचर में जहाँ तक ये वेबसाइट्स कंपनीज ही बनेगी, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी चाहिए। अब इंडिया का इंसान था, उसने गूगल की एक गलती बताई और उसको गूगल ने बहुत सारे पैसे देके अपने कंपनी में किया कि तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, और उसने एक गलती बताई और उसको इतने पैसे मिले करोड़ों में कि वो हमारी कंपनी में आ जाओ।
2: तो आप

0: क्या एम है एज एन वाइट हैकर? आप गवर्नमेंट के साथ जाके जुड़ना चाहेंगे या किसी प्राइवेट फर्म?
1: आगे अगर गवर्नमेंट अगर अच्छी चली तो मैं उनके साथ जाना पसंद करूंगा।
0: अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास।
2: मेरा नेम भव्य गर्ग है। तो जो मेरा मेन एम है बड़ों के बनने का वो है थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, ताकि मैं अपने जैसे कि हम देखते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, तो इन्होंने बहुत थ्योरीज दी हैं जिससे कि हम अपने जैसे क्वांटम फिजिक्स को, स्पेस को, एस्ट्रोनॉमी को समझ सकते हैं। परंतु इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मतलब अब तक हुआ। तो मेरा एम है कि मैं ऐसी कुछ थ्योरीज इंडिया के लिए बनाऊं जिससे कि हमारा इंडिया भी एक नाम पड़े कि हाँ इंडिया के इस इंसान ने, इंडिया के इस इंसान ने कुछ तरह है अपने देश के लिए, ताकि मैं अपना फुल पोटेंशियल अपने देश के लिए दे सकूं और मेरा देश ऊपर जाए।
0: अब जैसे आपने कहा थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके लिए क्या करना जरूरी है और ये फील्ड है क्या पर्टिकुलर?
2: एक्चुअली में इस फील्ड में फिजिक्स का मेन मोटिव होता है, इसके लिए पीएचडी बहुत जरूरी होती है। अगर बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो वो भी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जो ऑक्सफोर्ड में एक लेक्चरर के टाइप पे थे। मतलब इसमें क्या होता है, अगर आपकी थ्योरी ढूंढते हैं तो आपका नाम बनता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया में बच्चे जिनके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है, उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, थ्योरीज बनाए, ताकि हम अपने स्पेस को, अपने वर्ल्ड को, अर्थ को, ह्यूमंस को समझ सकें और अपने इंडिया को जाना आगे लेके जा।
0: अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास।
3: मेरा नाम श्रेया है और मैं बड़े होकर एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहती
0: हूँ। तो इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली?
3: इसकी इंस्पिरेशन मुझे मेरे नाना जी से मिली। वो आर्मी में ऑफिसर थे और मुझे बस एयरफोर्स में जाना।
0: तो स्टडीज के साथ साथ आपको कौन सी एक्टिविटीज करना?
3: स्टडीज के साथ साथ मुझे स्केटिंग करना पसंद है और स्केचिंग करना, ड्राइंग करना, ये सब मुझे पसंद है।
0: आपका नाम?
4: राम।
0: ओके राम, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते?
4: नेवी ऑफिसर।
0: इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली?
4: फ्रॉम इंटरनेट एंड मेनी ऑफिसर्स ऑफ नेवी।
0: तो हम ये तो पूछ चुके हैं कि क्या बनना चाहते हैं, तो आपसे थोड़ा क्वेश्चन हम चेंज करेंगे कि फ्री टाइम में आपको क्या करना पसंद है? टीवी देखना, मोबाइल गेम्स खेलना या कंप्यूटर या बाहर खेलना?
4: मोबाइल गेम्स खेलना।
0: कौन सी गेम सबसे ज्यादा पसंद?
4: फ्री फायर।
0: तो आप मोबाइल के साथ और स्टडीज के साथ कितना टाइम डिवाइड करते हैं, किस तरीके से?
4: मोबाइल के साथ ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स और स्टडी में 4-5 आवर्स।
0: तो आउटडोर एक्टिविटी कोई पसंद है?
4: नहीं।
0: तो आज के टाइम पर बच्चों को आउटडोर कम पसंद है लेकिन मोबाइल गेम्स के साथ वो ज्यादा जुड़े हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि स्टडीज के लिए आप कितना मोबाइल यूज करते हैं और जो गेमिंग है या अदर एक्टिविटीज है उसके लिए कितना यूज किया?
5: मेरा नाम हशमीत है एंड स्टडी के लिए जैसे अब क्लास से हमें होमवर्क मिलता है उसके लिए आई यूज फॉर 2 और 3 आवर्स एंड फॉर गेमिंग एंड अदर थिंग्स आई यूज फॉर 1 आवर।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि फोन चलाते चलाते या गेम खेलते खेलते ये ध्यान ही ना रहा हो कि पढ़ना भी आज?
5: यस, हुआ एक बार ही हुआ था। तब वो गेम नई लॉन्च हुई थी, तब वो बहुत अच्छी गेम थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं फिर वो खेलता ही रहा।
0: तो अभी हमने मोबाइल के बारे में बात की, तो अभी मैं आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में पूछना चाहूंगी कि आज के टाइम पर बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट है या मोबाइल?
6: मैम मोबाइल फोन्स।
0: ऐसा क्यों?
6: मैम बिकॉज मोबाइल मेक्स ऑल थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक गेम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, सो इट इंटरेस्ट चिल्ड्रन।
0: तो आपको नहीं लगता जैसे छोटे होते, मैं जब छोटी थी मुझे बाहर एक्टिविटीज करना ज्यादा पसंद है जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, तो आपको नहीं लगता उसमें ज्यादा मजा है?
6: यस मैम, इट इज आल्सो वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, बट विद मोबाइल गेम्स मोस्टली चिल्ड्रन आर बिकमिंग काउच पोटैटो।
0: तो आपको को लगता नहीं वो जो पोटैटो है उस पोटैटो को आजकल भागने की जरूरत है?
6: यस मैम।
0: तो आप क्या चाहेंगे कि आज के टाइम पर बच्चे जो है किस चीज को ज्यादा प्रेफर करें?
6: मैम आउटडोर गेम्स।
0: तो मतलब बच्चों की सोच थोड़ी बहुत तो है आउटडोर गेम्स की तरफ, लेकिन ज्यादातर टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल की तरफ जरूर जा रहे हैं। लेकिन बात जरूरी ये है कि आउटडोर गेम्स हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो मोबाइल का यूज करना भी कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है हमारी स्टडीज के साथ। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपको इंडिया में या अपनी सोसाइटी में कोई एक चेंज लाना हो तो आप वो क्या चेंज लेकर आने?
7: मेरा नाम रणवीर सिंह है और मैं भारत में ये चेंज लेना चाहूंगा, पहले एजुकेशन में रिफॉर्म्स होने चाहिए और क्लीनलीनेस और स्पोर्ट्स, क्या सी क्या मैम एजुकेशन अगर सबको नहीं मिलेगी इक्वली, क्योंकि हम देखते हैं काफी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इन एजुकेशन नहीं मिलती। हमारे पास ऐसे ऐसे जीनियस ब्रेन्स है पर वो कभी हाईलाइट हुए ही नहीं, सब एक एक दो दो जॉब्स की लाइन में, और वो अपना जो नेचुरल टैलेंट है वो कोई एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा। पेरेंट्स का दबाव होता है एजुकेशन में, क्योंकि एडोलेसेंस एक ऐसा टाइम पीरियड है जब हमारे पास हमारा ब्रेन फुलेस्ट काम करता है, हमारे सबसे ग्रेटेस्ट पोटेंशियल होता है। हमें ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए जो आगे जाके काम आए और पोर्टफोलियो डाइवर्स होए हमारे काम का, हमारे वर्कफोर्स का। और दूसरी बात क्लीनलीनेस, जैसे कि हम फॉरेन में देखते हैं म्युनिसिपैलिटी बहुत स्ट्रांग होती है वहां पे स्ट्रीट्स, और वहां पे ज्यादा कंप्लेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं होती बिकॉज दे सी इट ऑन देयर ओन वे, एंड यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और थर्ड इज स्पोर्ट्स, पहली बात वी नीड टू हमें फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्रिकेट में हम बहुत अच्छी टीम है हमारी, वी हैव द पोटेंशियल टू विन द वर्ल्ड कप टू, बट अदर टीम्स भी हैं, सो क्रिकेट की टीम तो हमारी पहले से ही स्ट्रांग है, बट हमें बाकी स्पोर्ट्स में हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कि कमलप्रीत कौर पिछली बार को ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो में 2020, तब वो सिक्स प्लेस में आई थी डिस्कस थ्रो में, बट उसके पास शूज खरीदने के भी पैसे नहीं थे, और वो ओलंपिक में उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया सिक्स नंबर पे आई, बट शी हैज द पोटेंशियल टू विन द मेडल टू इंटरनेशनल लेवल पे, बट फंड्स नहीं है। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग कमी है, चाइना फुटबॉल वर्ल्ड पावर बनना चाहता है फुटबॉल में, बट उनके पास लोग ही नहीं है जो खेलने वाले हैं। हमारे पास लोग हैं खेलने वाले बट फंड्स नहीं है। वी नीड टू नॉट बी पार्शियल बट वी नीड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स टू। जो आज ब्रॉन्ज लेकर आ रहे हैं वो कल को गोल्ड भी लेकर आ सकते हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर आया है, पहले शूटिंग में भी 2012 आई थिंक गोल्ड लेकर आए थे। एक एक गोल्ड हर साल के बाद क्यों, हम चाइना को कंपटीशन दे सकते हैं, इस बार हम फोर्थ में आए हैं, हम कोरिया जापान हम उन्हें कंपटीशन दे सकते हैं, और हमारे पास वो स्पोर्ट्स की है कैपेबिलिटी। सो हमें वो भी डाइवर्स करना पड़ेगा। जब हम इतने ज्यादा फंड्स क्रिकेट में डालते हैं, आईपीएल इज द बिगेस्ट डोमेस्टिक लीग इन द वर्ल्ड, सो व्हाई कांट वी जस्ट इंप्रूव आवर एथलेटिक्स। साउथ से इतने लोग आए हैं इस बार एशिया गेम्स में खेलने के लिए एथलेटिक्स में, जिन्होंने प्राउड किया सिल्वर गोल्ड, तो हम ओलंपिक्स में भी ऐसी परफॉर्मेंस कर सकते हैं जब हम एक गोल्ड में ना प्राउड हुए, जब हम 50 गोल्ड लेकर आए और यूएसए और चाइना को कम्पीट करें। सो भारत के पास वो पोटेंशियल है पर वो चेंजेस लाने की जरूरत है।
0: बहुत सही बात की कि आज के टाइम पर जैसे 2023 एशियन गेम्स में इंडिया का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, और आपकी हर एक बात सही है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि बच्चों के अंदर कौन सी स्किल्स हैं जो डेवलप करनी जरूरी है।
7: पहली बात जो हमें पुराना चीज जो चल रही है पेरेंट्स से इंजीनियर बनो डॉक्टर बनो, हमें वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेवलपमेंट हमें चाहिए इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए तो हमें हर चीज हर प्रोफेशन को डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे एआई का जमाना है, एआई 70,000 जॉब्स चले जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, इंडिया नीड्स टू प्रिपेयर अर्ली, लेकिन लोग नेगेटिविटी से देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी और 70,000 जॉब्स जाएंगी, बट 70,000 से ज्यादा जॉब्स भी आएंगी। प्रेजेंट में हमें वो सीखने की जरूरत है जो फ्यूचर में हमारे काम आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई एम लर्निंग द स्किल्स एंड आई एम ट्राइंग टू बी द बेस्ट इन दैट, बिकॉज दैट इज ओनली द फ्यूचर रेदर देन डॉक्टर इंजीनियर, दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग दैट देयर शुड बी मोर पीपल अबव पॉवर्टी लाइन एंड दे शुड गेट फ्री एजुकेशन एंड प्रॉपर एजुकेशन।
0: थैंक यू सो मच। इसके साथ मैं ये चीज भी बताना चाहूंगी कि देश भर के कॉलेजेस में अब सरकार द्वारा लाइफ स्किल कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें कॉलेजेस में बच्चों को लीडरशिप, एआई, मशीन लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, और साथ ही उन्हें जॉब इंटरव्यूज के लिए भी तैयार किया जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि आजकल के बच्चे प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, ना कि थ्योरेटिकल और बुकिश नॉलेज की तरफ सिर्फ और सिर्फ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास।
8: मेरा नाम नंदिनी शर्मा है, और एक प्रॉब्लम जो मैं एड्रेस करना चाहूंगी जिसके बारे में आज कोई भी नहीं बोलता, वो है प्रोटेक्शन फॉर विमेन। आज भी लड़कियों को किसी चीज के लिए कैपेबल नहीं समझा जाता हमारी सोसाइटी में। इतने लॉज पास हो रहे हैं बट इस चीज से रिलेटेड कोई लॉज पास नहीं हो रहे हैं। जो हो भी रहे हैं वो फॉलो क्यों नहीं हो रहे हैं? आज भी समझा जाता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। हम रेडियोज पे गाने सुनते हैं, 50% से ज्यादा वो मेल वॉइस होती हैं। फीमेल्स को उतना कैपेबल क्यों नहीं समझा जाता? एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों समझा जाता कि सिर्फ मेल्स ही 500 करोड़ की कंपनीज बना सकते हैं? और इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इनइक्वालिटी जो हमारी कंट्री में है और नैरो माइंडेडनेस। और ये हमारे घर में ही हम देख सकते हैं, जहाँ पे एक भाई और बहन होते हैं उनमें कितना फर्क किया जाता है और कितनी इनइक्वालिटी होती है। तो ये सब जो प्रॉब्लम जो एड्रेस की गई हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, वो ये तभी पॉसिबल हैं जब सब एक साथ होंगे। तो ये इनइक्वालिटी और नैरो माइंडेडनेस खत्म करने की बहुत ज़रूरत है।
0: तो आपको क्या लगता है कि हमारे लॉ में कहीं ना कहीं लूप होल है या इम्प्लीमेंटेशन में?
8: हाँ जी बिल्कुल, लॉज पास किए जाते, इतने कैंपेन्स बनाए जाते, पर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कभी भी कोई लॉज पास नहीं होते हैं। जो हुए भी हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं।
0: तो आप किस तरीके से इस इशू को टैकल करना चाहिए?
8: लॉज पास होने चाहिए और उनको गवर्नमेंट को अश्योर करना चाहिए कि वो लॉज फॉलो हो रहे हैं।
0: और अगर आपकी तरफ से अगर आपको कोई चांस मिले कि कोई ऐसा लॉ पास करने का या वुमेन को कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का, तो वो आप क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए?
8: अपॉर्चुनिटी जैसे मेरे घर में ही मेरी बहन को दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था, बट उसको अपना सपना दबाना पड़ा क्योंकि हमें भी पता कि दिल्ली कितना अनसेफ है लड़कियों के लिए। तो ये जो एक चीज़ है कि लड़कियाँ जो अपने सपने दबा देती हैं ये सोच के कि लोग क्या बोलेंगे, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए।
0: उसकी शुरुआत हम किस तरीके से कर सकते हैं?
8: अपने खुद के दिमाग में जो नैरो माइंडेडनेस है, अपनी फैमिली में जो नैरो माइंडेडनेस है वो खत्म करते
0: हैं। इक्वालिटी का एक ऐसा मुद्दा है जो इस टाइम पर हमें उस पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
2: मेरा नाम भव्य गर्ग है और जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये हो सकता है कि हमारा इंडिया जो है वो लैक करता है अपॉर्चुनिटीज में। जिन बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं वो उसका यूज नहीं करते और जिनके पास दिमाग है उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। जैसे अगर देखा जाए कुछ बच्चे जिनका दिमाग साइंस में बहुत ज्यादा होता है लोग उनको पीछे छोड़ देते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने अपनी बहुत छोटी एज में हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी मैथ की थ्योरम्स दिए, बहुत सारी इक्वेशन दी, बट उनको इंडिया में कुछ सहायता नहीं मिली, उनको लंदन में जाकर सहायता मिली और इंडिया का नाम वहां बना नहीं। देखा जाए तो हमारे जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लाइक यू कैन से जगदीश चंद्र बोस से एंड मैनी मोर, उनको इंडिया में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, उनको मिलता है बाहर देश में जाके। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में भी ऐसा कुछ बने, जैसे लंदन में रॉयल सोसाइटी है, जैसे इंडिया में कुछ बने जिससे कि हमारा भारत भी साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स और ऐसी फील्ड में आगे बढ़ सके।
0: और आपको क्या लगता है कि किन तरीके की इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं इन चीजों को?
2: जैसे कि स्कूलों में साइंस जैसे टेक्नोलॉजी AI इनके पेड़ लगने चाहिए, ना कि मतलब नॉर्मल चीजों के, बल्कि इनके पेड़ लगने चाहिए कि आगे जाके इनका जमाना आने वाला है कोडिंग, जो बहुत ही आजकल के जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके पेड़ लगने चाहिए ताकि लोग समझे कि ऐप कैसे बनते हैं, वेबसाइट बनाएं और इंडिया को उस लेवल पर लेकर जाएं जहां पे अमेरिका इस टाइम पहुंच चुका है और इंडिया को एक लार्जेस्ट GDP बना सके हमारे वर्ल्ड की।
0: तो जैसे आपने कोडिंग के बारे में इस टाइम बताया, तो आप ये कोडिंग अगर सीख रहे हैं तो कहां से सीख रहे हैं और आपको स्कूल से इसके लिए हेल्प मिलती है किसी भी टाइप की?
2: देखा जाए तो हमारे भारत में कोडिंग के बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत तरह के ऐप है जो हमें कोडिंग सिखाते हैं, बट उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है जिससे कि मिडिल क्लास बंदा, अब इंडिया में बहुत लोग मिडिल क्लास हैं, कुछ ही लोग जो हैं जो हाई क्लास हैं और मोस्टली तो लोअर क्लास में ही आते हैं मतलब। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया में कोडिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, जैसे कि एजुकेशन मिल रही है सर्व शिक्षा अभियान इंडिया में, राइट टू एजुकेशन एक्ट है इंडिया में, तो ऐसी एक कोडिंग का एक्ट भी होना चाहिए जिससे कि बच्चे जो हैं वो सीख सके कि हाँ इस तरह से ऐप बनाए जाते हैं, इस तरह से हमारा भारत ऊपर जा सकता है। जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे हमारे इंडिया में अकाउंट सिखाया जाता है, परंतु इनको सिखाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए हमारे भारत में। जैसे कि अभी देखा है तो हमारे भारत की कुछ कंपनी टाटा बिरला ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप, तो ये बहुत ऊपर जा रही कंट्री, ये बहुत ज्यादा ऊपर जा रही कंपनीज, तो इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से ट्रेडिंग में इनको सिखाना चाहिए, बच्चों को ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए ताकि बच्चे पैसा कमा सके आगे जाके। देखा है तो हमारे भारत में हम इतिहास पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, इतिहास क्यों पढ़ा था कि वो गलतियां हम दोबारा ना कर सके, परंतु वो दोबारा गलतियां हो रही हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो गलतियां भी ना हो परंतु हमारा जो भारत है वो इतना ऊपर चला जाए कि लोग कहें हाँ ये भारत था और ये भारत ही रहेगा, जो सोने की चिड़िया एक टाइम पर था वो दोबारा सोने की चिड़िया बननी चाहिए। तो उनका इस्तेमाल वही बच्चे करते हैं जिनको आगे जाके SST में जाना है, जिनको साइंस में जाना है उनके इसमें कोई रोल नहीं होता, तो उनको साइंस पढ़ाई जाए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चेंज आना चाहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में कि आफ्टर 6th क्लास बच्चे का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसमें लेके जाओ, बाकी के जो सब्जेक्ट उनके नहीं पसंद उनको मत पढ़ाओ।
0: तो ये देश के बच्चे हैं जो कल जाकर आगे जाकर देश को कहीं ना कहीं तरक्की की ओर लेकर जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा इंडिया जैसे पहले था, पहले सोने की चिड़िया था, वो सोने की चिड़िया वापस बने, वापस से नंबर वन बने, जैसे कि अभी राह पर जा रहा है उसी राह पर और तेजी से बढ़े। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास।
9: माय नेम इज वृंदा। मैं वो चेंज लेना चाहूंगी इंडिया में कि आजकल इंडिया में बच्चे ज्यादातर सिर्फ फोन में लगे रहते हैं, आउटडोर गेम्स बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं। तो उन्हें खेलनी चाहिए आउटडोर गेम्स ताकि उनकी हेल्थ मेंटेन रहे। वो सिर्फ पूरा दिन फोन में लगे रहते हैं जिसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है और उनकी जो हेल्थ होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। अगर वो दिन भर फोन चलाते रहेंगे तो उनकी आई साइट पे भी फर्क पड़ेगा, तो उन्हें आउटडोर गेम्स ज्यादा खेलने चाहिए।
10: मेरा नाम हर्षित कुश है और सर मैं स्कूल्स में अपने एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा चेंज लाना चाहूंगा जो है कंसेप्ट क्लैरिटी। सो बहुत बच्चों को कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, हमें उनको मतलब स्कूल्स को प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को समझ नहीं आएगा, जब उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब वो एक ही ऑप्शन उनके पास बचेगा क्रैम करना। सो क्रैम करने के बाद वो पेपर में मार्क्स ले लेंगे, वो पास हो जाएंगे, बट उनके आगे चल के वो कंसेप्ट काम नहीं आएगा क्योंकि उनको समझ नहीं आया है। तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि स्कूल को बच्चों को डिवाइड करना चाहिए उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे। जैसे कि मान लो किसी को स्पोर्ट्स में क्रिकेट पसंद है तो स्कूल वालों को क्रिकेट वाले बच्चे अलग रखने चाहिए और उनको उनके लिए मतलब एक स्पेशल ट्रेनर रखना चाहिए जो उन्हें मेनली क्रिकेट के बारे में बताएगा एंड सारे टेक्निक्स, प्रो टिप्स सब बताएगा। सो और ऐसे ही मोर प्रैक्टिकल लर्निंग को एनहांस करना चाहिए।
0: तो साइंस के अलावा कौन सी फिजिकल एक्टिविटी है या कौन सी क्रिएटिव एक्टिविटी कह सकते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट?
10: मेरा इंटरेस्ट तो मेनली क्रिकेट में, बैडमिंटन में और ब्रेन में थोड़ा सा चेस में, थोड़ा सा।
0: तो चेस में किस तरीके से इंटरेस्ट?
10: मैम चेस में इंटरेस्ट है कि मुझे नई नई ट्रिक सीखना पसंद है, बट मेरा एक दोस्त है भव्य, मैं उसे हर बार हार जाता हूँ, मैम मुझे वो इम्प्रूव करना है, थोड़ा सीखने हम टिप्स ठीक से।
0: तो चेस से ब्रेन शार्प भी होता है, तो बच्चों के कई इंटरेस्ट हैं यहाँ पर। तो आप कोई चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में?
11: यस मैम।
0: क्या चेंज लाना चाहेंगे?
11: मैम इंडिया में ना बच्चों को ना ये पढ़ाया जाता है कि ना हमें जॉब्स पे फोकस करना चाहिए, लेकिन अमेरिका में ये पढ़ाया जाता है कि हमें बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। आपको पता ज्यादातर मशहूर कंपनीज लाइक मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, टेस्ला, ये सारे अमेरिकन ब्रांड्स ही क्यों है, इंडियन ब्रांड्स क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में लोग कहते हैं कि जॉब्स कर लो वो सिक्योर है, लेकिन बिजनेस मत करो वो सिक्योर नहीं है।
0: आगे जाकर आप अपना बिजनेस चाहते हैं या आप किसी और फील्ड के अंदर जाते
11: हैं? मैम बेसिकली आई वांट टू वर्क इन अ रिसर्च सेंटर।
0: तो वहां पर आप किस तरीके से रिसर्च करना चाहते हैं?
11: मैम आई वांट टू बिकम अ जेनेसिस्ट।
0: तो इसके बारे में बता सकते हैं कि जेनेसिस्ट क्या होता है और क्या उसका काम होता है?
11: मैम ही ट्रीट्स जेनेटिक डिजीजेस लाइक कैंसर मैम, बट ही हैज मोर वर्क आल्सो।
0: थैंक यू सो मच। अब बच्चों से पढ़ाई से जुड़ी बातें तो हो चुकी हैं बहुत, अब आपको ले चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनाते हैं आपको बच्चों की पसंद का एक गीत।

0: अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इससे पहले ये पूछना चाहूंगी कि क्लास का टॉपर बच्चा कौन है जो टॉप करता है, तो आप अपना शेड्यूल किस तरीके से मैनेज करते हैं? जैसे कि यहाँ के ज्यादातर बच्चों ने कहा कि उन्हें मोबाइल गेम्स खेलना भी पसंद है और साथ साथ अपनी स्टडीज भी मैनेज करते हैं, तो आप टॉप भी करते हैं, तो आप बाकी बच्चों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे और अपना टाइम शेड्यूल आप कैसे बनाते
1: हैं? मेरा नेम भव्य गर्ग है। तो देखा जाए तो आजकल के बच्चों का दिमाग मोबाइल गेम्स में चलता है, तो बट मेरा जो मानना है कि मोबाइल गेम्स बच्चों के फ्यूचर खराब करते हैं, हमें वो नहीं खेलनी चाहिए। हाँ, कुछ हद तक वो सही है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, परंतु बच्चे क्या करते हैं आजकल, वो प्रेशर ले लेते हैं फैमिली के दबाव में या तो मार्क्स के लिए प्रेशर ले लेते हैं। बट मार्क्स मैटर नहीं करते मेरे लिए, मेरे लिए मैटर करते हैं मेरी नॉलेज, मैं कितना बोल पाता हूँ, मैं कितना समझ पाता हूँ, वो मेरे लिए मैटर करता है मोस्टली। तो मैं यही समझ के पढ़ता हूँ कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या, मैं वो चीज़ समझ पा रहा हूँ क्या, वो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ रहा है, अगर बैठ गया तो मेरे लिए मतलब वो हो चुके कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से मैं पढ़ता हूँ। और टाइम शेड्यूल की बात की जाए तो मैं एग्जाम्स में मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता, मतलब मेरा पढ़ने का टाइम जो रहता है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे रहता है एग्जाम, मतलब एग्जाम की तैयारी करने का। उससे ज़्यादा ना मैं पढ़ पाता हूँ ना मैं पढ़ना चाहता हूँ, कि उससे ब्रेन जो है ना हमारा ब्रेन वो उस डायरेक्शन में चलता है कि रट्टा मारने में। बट मेरा कंसेप्ट रट्टा मारना नहीं है, एग्जाम उसे समझना, हम समझना हम जल्दी समझ पाते हैं, तो रट्टा मारे हमें टाइम लगता है। तो वही मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है वो रट्टा ना मारे, उसको समझें कि वो कंसेप्ट क्या है, हमें वो क्यों पढ़ाया जा रहा है और उसका मेन मोटिव क्या पढ़ाने के पीछे।
0: तो जैसे आप स्टडीज से फ्री होते हैं या थक जाते हैं मान लो पढ़ते पढ़ते, तो आप रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं?
1: या तो मैं जैसे बाहर घूम लेता हूँ, वॉक कर लेता हूँ, मैं बाहर दोस्तों खेलने चला जाता हूँ, जैसे मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है तो मैं खेलने चला जाता हूँ, या फिर मैं अपने जो मेरे जैसे मेरे जो मेरा रूफ है उस पर कई पेड़ है मेरे पास लगे हुए, मैं जो मेरे को शौक है मतलब गार्डनिंग का, तो मैं वहाँ अपने पेड़ के साथ बैठ रहता हूँ अपने पेड़ों के पास।
0: यहाँ पे पता चलता है कि बच्चों को नेचर के साथ भी ज्यादा लगाव है। अब हम दूसरे बच्चों के पास चलते हैं।
2: मेरा नाम रुचि ग्रोवर है, और बात रही स्टडी की तो मैं कभी भी स्ट्रेस नहीं लेती, एक अपने तरीके से पढ़ती हूँ जैसे मुझे पढ़ना है। पहले तो मैं रट्टा नहीं मारती, मैं अपने हर कंसेप्ट को समझ कर पढ़ती हूँ। जैसे अगर थोड़ी देर लाइक 1 घंटा पढ़ लिया 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती हूँ। जैसे मैं अपने बहन भाइयों के साथ खेलने चली जाती हूँ ऊपर, मैं पेड़ पौधों के साथ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर टहल लेती हूँ, या थोड़ी देर सो भी जाती हूँ, पर थोड़ा देर पढ़ना थोड़ी देर खेलना, तो मैं अपने टाइम को ऐसे मैनेज करती हूँ।
0: तो आप टाइम मैनेज इस तरीके से करती हैं रिलैक्सेशन के लिए, इसके अलावा आप मोबाइल यूज़ करती हैं जैसे बाकी बच्चों ने कहा?
2: मैं करती हूँ लेकिन बहुत कम, उसका एक प्रॉपर टाइम है, लाइक 1 घंटा कर लिया स्कूल से आए थोड़ी देर रिलैक्सेशन के लिए, 1 घंटा कर लिया यूज़, तो ऐसे करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती।
0: तो बच्चों ने यहाँ पे अपने स्टडी पैटर्न के बारे में बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास। आपका नेम, और जैसे कि अभी हमने स्टडी पैटर्न के बारे में बात करी, तो आपका स्टडी पैटर्न क्या रहता है?
3: मेरा नाम दिव्यांश अरोड़ा है, और एग्ज़ाम्स टाइम में मुझे ये चीज़ पता है कि मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वीक हूँ, तो उस वजह से मैं मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन ज़्यादा करती हूँ उस टाइम पे। जैसे 2 घंटा पढ़ लिया और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक और उसके बाद फिर से पढ़ाई, तो मैथमेटिक्स में मेरा ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा साइंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है।
0: तो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि टीचर्स आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए, और आपका कितना परसेंट रहता है कि उन चीज़ों को दोबारा रिपीट करना और रिवाइज करना?
3: स्कूल में मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं मैम के पास जाती हूँ फ्री टाइम में, थोड़ा बहुत अगर 0 पीरियड में, तो मैं मैम से 2-3 कंसेप्ट कंफर्म करके अपने उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती हूँ घर पे, और उसके बाद वो थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं।
4: मेरा नाम रणवीर सिंह है, और मैं मतलब ऐसे पढ़ता हूँ जैसे साइंस में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया इंटरनल अच्छे से, तो जब मैं क्वेश्चंस देखता हूँ मेरे को उसके आंसर पता होता है कि मैंने समझा, इसमें रट्टा मारने वाली बात नहीं। अब नोटबुक ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखा सारा रट्टा मारा, लेकिन मैं पढ़ता हूँ SST में भी ऐसे, इंग्लिश में भी ऐसे, बस ग्रामर के देख लिया मेरे को, जैसे टेंस के रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस ये, मैंने मेरे को अगर आप रूल्स पूछोगे मेरे को नहीं पता रूल्स, मगर आप मेरे को सेंटेंस दोगे इसको कन्वर्ट कर मैं कर लूँगा, बिकॉज मैंने रूल को रट्टा नहीं मारा, मैंने वो समझा है। और मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि हाँ मोबाइल फ़ोन पकड़ा 10 मिनट का ब्रेक लिया फिर मैंने किया, क्योंकि मैंने 10 मिनट यूज़ कर लिया तो मैं दोबारा पढ़ाई पे मेरा जो पुराने वाला कंसंट्रेशन है मैं नहीं कर पाता। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे 1 महीने पहले सारा एक बार सिलेबस ख़त्म कर लिया, फिर जो 1 दिन की छुट्टी होती है आधा दिन उस पर फिर से सिलेबस रिवाइज कर लिया, जो आधा दिन होता है शाम वो मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ, मेरे पे प्ले स्टेशन है मैं वो खेलता हूँ, मोबाइल गेम्स खेलता हूँ, आराम से सोता हूँ, मूवी देख के एक सोता हूँ मैं लैपटॉप पे, फिर आराम से सोता हूँ, फिर वहाँ पेपर करता हूँ, फिर बस में भी पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने आजकल स्ट्रेस लिया नहीं, मेरे को एग्जाम में फन आता है लिखने में, एग्जाम्स में क्वेश्चन आया लिखा, मेरे को उस चीज़ में एक्साइटमेंट मिलती है, मतलब डिसिप्लिन क्या है डिसिप्लिन, मैंने एक कोट देखा था रील में कि डिसिप्लिन ये है कि जो चीज आपका करने का मन नहीं है आप उसे उस तरीके से करो कि आपको वो करने में मजा आता है बहुत ज्यादा, तो वो डिसिप्लिन है, तो मैं वैसे ही करता
0: हूँ। तो जैसे आपने कहा साइंस आप पढ़ लेते हैं पूरा चैप्टर, लिटरेचर भी चलो हम पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो आप मैथ्स का कैसे तैयारी करते हैं?
4: मैथ्स में प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं सिर्फ यही नहीं करता, मैं बुक से करता हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चन हुए 2-3 क्वेश्चन उसमें टिक कर लिए मुश्किल लग रहे हैं वो कर लिए, फिर मैं सप्लीमेंट्री बुक्स नेट में से सप्लीमेंट्री बुक्स मिल जाती है मेरे को PDF डाउनलोड करता हूँ और मैं सप्लीमेंट्री बुक जैसे आर डी शर्मा होगी फिर मैं वो कम्प्लीट करता हूँ, लेकिन तो मैं थोड़ा क्वेश्चन ऐसे मार्क करके मैं कर लेता हूँ, बस मैं ये करता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लो वो अच्छे से करो, बस जैसे 10 घंटा करना है बस किताब खोल के बैठे रहो वो नहीं, 1 घंटा करो अच्छे से।
0: ये बहुत बढ़िया चीज बताई कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आराम से रिलैक्स होके स्टडीज करनी चाहिए, और हाँ स्टडीज के साथ साथ रिलैक्स रहना, स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम दूसरे बच्चों के पास चलते हैं, आपका नेम और कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पसंद है, और साथ ही सोशल मीडिया के बारे में, आज के टाइम पे जैसे कुछ बच्चे हैं यहाँ पर तो नहीं मुझे सुनने को मिला लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सोशल मीडिया काफी यूज करते हैं, तो उसके बारे में।
5: मेरा नाम वीरेन बंसल है, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश स्पीकिंग है। मेरे स्टडी का पैटर्न बेसिकली ये है, तो बेसिकली प्रैक्टिकल और इंटरेक्ट पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करता हूँ। बेसिकली जैसे कि आजकल की जितनी पॉपुलेशन है, जितने बच्चे हैं, वो सारे के सारे मोस्टली मोबाइल यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं रील्स स्क्रॉल करने के लिए। मैं ये करता हूँ, रील्स स्क्रॉल करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करता हूँ, पर उनसे कुछ सीखता हूँ, मूवीज़ भी देखता हूँ, नेटफ्लिक्स सब कुछ देखता हूँ, उनसे काफी कुछ सीखता हूँ, इंग्लिश मूवीज देखता हूँ उससे इंग्लिश सीखता हूँ, काफी कुछ सीखता हूँ।
0: तो आपने रील्स में से क्या क्रिएटिव चीजें अभी तक सीखी?
5: रील्स में से क्रिएटिव चीज जैसे कि काफी सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो काफी कुछ सिखाते हैं, स्टडी के बारे में काफी कुछ सिखाते हैं, साइंस के बारे में काफी कुछ सिखाते हैं, और कंप्यूटर जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है उसके बारे में भी काफी कुछ समझाते हैं।
0: तो फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है इस टाइम?
5: फेवरेट इन्फ्लुएंसर इस टाइम पर मेरा मोस्टली ना फन वे में लेके जाता हूँ मैं स्टडी को, मोस्टली मेरा ट्रिगर्ड इंसान इन्फ्लुएंसर।
0: ओके, तो ट्रिगर्ड इंसान के मैंने जितने भी देखे वीडियोस, गेमिंग के ज़्यादा उसमें वीडियोस रहते हैं, तो आप उसके अंदर क्या आपने अभी तक सीखा?
5: मैंने उन वीडियो से ये सीखा है, ट्रिगर्ड इंसान से ये सीखा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जब वो छोटे थे, छोटे से लेकर बड़े होने तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, काफ़ी सारी डिफिकल्टीज फेस करी हैं, उन्हें काफ़ी सारे यूट्यूब के इवेंट्स में बुलाया नहीं गया था फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और आज देखिए उनके गाने भी आ रहे हैं, उनका सारा का सारा परिवार यूट्यूब पर, सारे के सारा परिवार उन पर वीडियोस बना रहे हैं, उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ।
0: तो जो ट्रिगर्ड इंसान है आई थिंक सो वो इंजीनियर है, तो आपका एम क्या है?
5: मेरा एम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना, जिसके लिए मुझे मैथ्स करने की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, लेकिन मैं काफ़ी सारे और बच्चों की तरह मैथ्स में वीक हूँ, और वो भी मैं इन्हीं वीडियो से सीखने की कोशिश करता हूँ।
0: वेरी गुड, ग्रेट। तो यानी कि सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ सीखा भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया हमें सिर्फ गलत राह पर लेके जाए, लेकिन हाँ ये चीज है कि सोशल मीडिया का बेहद ज्यादा इस्तेमाल भी खतरनाक हो सकता है। तो बच्चों से बातें तो बहुत हो गई, बच्चों की सोच को भी हमने जान लिया, उनके इंटरेस्ट को भी जान लिया, अब आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल मैम से, और मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उनके क्या व्यूज हैं उनके बच्चों को लेकर और इन फ्यूचर अपने स्कूल को लेकर।
6: मुझे बस बच्चों के साथ, मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूँ, और बच्चों को जिसमें भी रुचि हो मैं चाहती हूँ वो मौका उनको दिया जाए। हालांकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और अगर उसको ठीक से फॉलो किया जाए तो वो इसी पे अग्रसर है, और इसी सिलसिले में जब आप भी आए तो मैंने बच्चों को मौका दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें से कितने एंकर्स हैं, कितने बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, किसी को बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो अपने अपने फील्ड्स में जाने के लिए उनको पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो मेरा भी वही ख्याल है और आप भी उसी पे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी उसी रास्ते पे हैं, अगर सभी मिलकर करेंगे तो आई थिंक बच्चों को बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान होगा और हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज हमारे देश से जो बच्चे बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब देशों में जाने के लिए अग्रसर रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है और मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि आप अपने ही देश में रह करके अपनी शिक्षा को अपने देश में ही लगाएं और अपने देश को आगे बढ़ाएं।
0: थैंक यू सो मच मैम, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमने यहाँ के बच्चों से बात की और बात करकर ऐसा लगा कि इस देश का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि बच्चों की सोच इस समय 8th क्लास के बच्चे हैं और जिस लेवल पर है वो बहुत ही बाकमाल, मैं कहूँगी कि उनकी सोच है, और मैं चाहूँगी कि ये स्कूल इसी तरीके बच्चों को मोटिवेट करता रहे और इसी तरीके से बच्चों के लिए कोई ना कोई नई एक्टिविटीज लाता रहे और नई उम्मीदें उनके अंदर जगाता रहे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो अब प्रिंसिपल मैम के बाद हम बात करेंगे सरस्वती विद्या निकेतन चंदपुरा स्कूल के चेयरपर्सन के साथ और चाहेंगे कि वो कुछ अपने बारे में भी बताएं और स्कूल के बारे में भी।
7: नमस्कार, मैं आपके सभी सुनने वालों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं बहुत आभारी हूं रेडियो वितस्ता की टीम का कि उन्होंने सरस्वती विद्या निकेतन को चुना आज इस प्रोग्राम के लिए। और मैं भरत जी को पिछले 12 सालों से जानता हूं लगभग और मैं देख रहा हूं कि लगातार रेडियो की दुनिया में और ड्रामा की दुनिया में थिएटर की दुनिया में वो लगातार काम कर रहे हैं और उनका काम सराहनीय है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये रेडियो चैनल अम्बाला को दिया। ये अम्बाला के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि आप स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं तो सरस्वती विद्या निकेतन थोड़ा सा हटके इस तरह से है कि हम तीन चीज़ों को बहुत फोकस कर रहे हैं यहाँ स्कूल में, वो है नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। तो नॉलेज के लिए तो सभी स्कूल काम करते हैं, हम भी काम कर रहे हैं कि बच्चों को सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छे से मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्किल। नॉलेज किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना, स्किल उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करें, तो इस चीज़ पे सरस्वती विद्या निकेतन बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि नॉलेज मतलब कि मैं इंग्लिश मैंने सीख ली और मुझे भाषा आ गई और मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया। लेकिन मान लीजिए कल को मेरा एक कोई झगड़ा हो गया और मैं थाने चला गया और मुझे एप्लीकेशन लिखनी ना आए, तो मतलब मुझे नॉलेज तो है पर मुझे स्किल नहीं है। मैंने अकाउंट्स तो पढ़ लिया लेकिन जब मैं बिजनेस करने गया तो मैं बिजनेस में सफल नहीं हो पाया, फेल हो गया। तो हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि बच्चा नॉलेज तो ले साथ साथ स्किल भी ले। हमने कुछ स्किल कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए हैं क्योंकि स्किल की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज पूरी दुनिया इसको समझ रही है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पुरजोर कोशिश की है कि हिंदुस्तान जो है देश, हमारा देश जो है वर्ल्ड में स्किल प्रोवाइडर, स्किल कोर्सेज प्रोवाइडर बन जाए। क्योंकि अगर किसी कंट्री में अनाज ज़्यादा है तो वो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, किसी में फ्रूट ज़्यादा है तो वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने यहाँ से। हमारे यहाँ मैन पावर बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम स्किल्ड कर दें उनको तो स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करने वाले हम एक हब बन सकते हैं, हम एक ऐसी कंट्री बन सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड को स्किल्ड मैन पावर दे। तो उनका ये जो सपना है कि विश्वगुरु देश को बनाना है, उसमें हम भी कॉन्ट्रीब्यूट इसी तरह से कर रहे हैं कि हम नॉलेज, स्किल और वैल्यूज दे रहे हैं। तीसरी चीज़ वैल्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज हम बात करते हैं समाज में, हम देखते हैं कि किसी के पास नॉलेज है, स्किल भी है, लेकिन वो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, उसकी किसी पड़ोसी से बनती नहीं है, इसका मतलब वैल्यूज़ की कमी है। तो सरस्वती विद्या निकेतन यहाँ बच्चों को वैल्यू सिखाने पर भी बहुत फोकस कर रहा है, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग तरह की जो है हम स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं कि जिससे बच्चों का ये एक बैलेंस पर्सनैलिटी वो बन सकें इस प्रकार।
0: तो सर, जैसे अभी आपने कहा बच्चों में स्किल्स होनी चाहिए, तो आप स्किल के लिए कौन सी स्कूल में एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं बच्चों को?
7: देखिए, स्किल के बारे में हम इस तरह से करते हैं कि जैसे आप स्किल कोर्सेज में हमने कुछ 5-6 स्किल कोर्सेज यहाँ ऐड किए हैं। जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस एक स्किल है, इसमें हम पूरा बच्चे को मेकअप आर्टिस्ट का, हेयर का पूरा सिखाते हैं, तो ब्यूटी वेलनेस का एक स्किल हमने यहाँ पे दे रहे हैं। दूसरा कुकरी, एक अच्छा कुकिंग एक अच्छा स्किल है, तो उसमें किस तरह से एक शेफ बच्चा बन सकता है, उसका इस तरफ रुझान बने, इस तरफ इंटरेस्ट बने, तो फूड प्रोडक्शन में हम एक अच्छे से बच्चे को एक स्किल यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है कंप्यूटर का जमाना है, कोडिंग का जमाना है, AI का जमाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी हम स्किल कोर्सेज यहाँ पे चला रहे हैं, जिससे AI में जिन बच्चों का इंटरेस्ट है, कंप्यूटर्स में जिनका इंटरेस्ट है, उनको वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस, आप जानते हैं कि चारों तरफ बैंकिंग और इंश्योरेंस में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक स्किल कोर्स हम यहाँ पे चला रहे हैं। इसके अलावा मीडिया मैनेजमेंट एक स्किल है, तो मास मीडिया के ऊपर हम एक कोर्सेज चला रहे हैं। तो इस तरह से हमने कुछ स्किल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, हमें बहुत अच्छा जो है लोगों का इंटरेस्ट है, बच्चों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है। आने वाले टाइम में हम और स्किल कोर्सेज प्लान कर रहे हैं तो यहाँ कर सकते हैं।
0: तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के चेयरपर्सन आशुतोष गौड़ जी के साथ, तो उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया और प्रिंसिपल मैम ने भी बच्चों के बारे में बताया। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें बच्चों से मिलवाया और बच्चों की सोच के बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को जानने का मौका दिया। उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप किसी भी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 705641310 पर टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। साथ ही जल्द ही हाजिर होंगे आपके साथ एक और नया एपिसोड लेकर बच्चों की बात का। तब तक के लिए इंतज़ार करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें और सुनते रहें 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफ़र जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बच्चों की बात। आज आपने सुनी सरस्वती विद्या निकेतन चंदपुरा अम्बाला कैंट के बच्चों की बात। कार्यक्रम को संचालित, एडिट और प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: स्वस्थ हृदय के लिए एक जन जागरूकता पहल हेल्थ विजन्स एम हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आप सभी श्रोताओं को हमेशा स्वास्थ्य लाभ मिले इस श्रृंखला में आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मित्तल अंबाला से, जो कार्डियोलॉजिस्ट है। वे हमें बताएंगे कि दिल को स्वस्थ कैसे रखा जाए। डॉक्टर मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।
1: आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिल की बीमारी बिना किसी चेतावनी के लक्षण के हो सकती है?
2: भरत जी, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, दिल की बीमारी बिना किसी चेतावनी के या लक्षण के हो सकती है। आजकल जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि जवान लोग सड़क पे चलते हुए अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है उसको अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको हम सडन कार्डिक डेथ बोलते हैं, SCD। आजकल हो ये रहा है कि बेसिकली हम इसमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमारे हार्ट में दो सिस्टम होते हैं। एक है खून की नलकियों का सिस्टम, जिसमें खून का प्रवाह होता है
1: जी।
2: तो अगर इन नलकियों में ब्लॉकेज आए उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। दूसरा होता है करंट का सिस्टम। हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वायरिंग होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी रुक जाए, वायरिंग एकदम से अचानक से रुक जाए, इसे बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। तो दोनों चीजों में फर्क है। तो आज हमारे पास दो तरीके की बीमारी होती है। एक तो होती है खून की नलकियों की बीमारी, जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक, और दूसरी होती है करंट के सिस्टम की बीमारी, जिसमें हो जाते हैं कार्डिक अरेस्ट, अरिथमियाज, मतलब ध्वनि की समस्या है, रिदम डिस्टर्बेंसेस। आजकल के जमाने में जिस तरीके का स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर, उसमें ये बहुत देखने को मिल रहा है। इसके कुछ हिंट्स मिल जाते हैं हमें। अगर परिवार में बहुत ज्यादा किसी को, परिवार में ऐसा होता है कि माता पिता या भाई बहन या दादा दादी, किसी को अचानक मृत्यु हुई हो किसी के परिवार में, या फिर मरीज कोई अचानक से बेहोश हो गया हो कुछ सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए आंखों के सामने अंधेरा आ गया हो, या फिर कुछ नए लक्षण आए जैसे सीने में दर्द, मेहनत करने पे छाती में जकड़न, भारीपन, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जीवन में, तब मरीज को इन सब का टेस्ट कराना चाहिए आगे ना। मरीज को अपने परिवार की हिस्ट्री देखनी है। जैसे डॉक्टर के पास जब मरीज आता है, हम उसकी उम्र देखते हैं। कोई भी भारतीय पुरुष 35 या 40 से उम्र ज्यादा, औरत 50 के बाद जब उनकी मेंसेस रुक जाती है उसके बाद रिस्क बढ़ जाता है। तो इन तीन चीजों को हम बदल नहीं सकते, भारतीय होना, पुरुष होना या औरत होना, और उम्र। जो चीजें बदल सकती है वो होती है शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, कोई पुराना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, किसी के भी परिवार में 55 से कम में पुरुष को हार्ट अटैक, 65 से कम में औरत को हार्ट अटैक, मोटापा और बहुत स्ट्रेस, अगर ये सब चीजों में से कुछ भी है तो पेशेंट को अपना टेस्ट कराना चाहिए। या फिर अगर पेशेंट डेली वॉक करने जाता है, चलता फिरता है, और उसको अचानक से लगता है कि आज मैं चल नहीं पा रहा, आज मुझे चलने फिरने में सीने में जकड़न, भारीपन लग रहा है या जलन लग रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ आज तक, और रुकने पे आराम आ रहा है, या सांस फूल रहा है, या थकान हो रही है, या धड़कन तेज हो रही है, ये चार लक्षण, तब मरीज को इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दिल से जुड़ा कौन सा लक्षण लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं?
2: जी, बहुत अच्छा सवाल। बहुत कॉमनली क्या होता है कि लोगों को लगता है एसिडिटी होती है, तो पीपल ऑलवेज थिंक, उनको लगता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, ये एसिड का लक्षण है। आजकल देखा गया है कि एक तो औरतों में, दूसरा डायबिटिक लोगों में छाती में दर्द नहीं होता, छाती में जलन होती है, और थोड़ा छाती भी क्या, छाती से नाभि से ऊपर पेट में जलन होना, एसिडिटी की दवाई के बाद आराम ना मिलना, कई बार दस्त लग जाते, ये लक्षण लोकल डॉक्टर गैस की तरह ट्रीट करते हैं, बट ये एक MI हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, इनमें एक ECG जरूर होनी चाहिए। तो बाकी थोड़ा बहुत सांस फूलना, धड़कन तेज हो जाना, रोज पेशेंट आधा एक किलोमीटर चलते ही चलता है, 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अब अचानक से उसको लगता है कि मैं चल नहीं पा रहा आज, मुझे आज चलने में कुछ हो रहा है, कुछ डिफरेंट है आज, तो उसको इमीडिएटली इवैल्यूएशन की जरूरत है पेशेंट को।
1: आपसे अगला प्रश्न करता हूं, तनाव हमारे दिल को चुपके से किस तरह नुकसान पहुंचाता है?
2: आज के जमाने के हिसाब से ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इनफैक्ट इस पे बहुत स्ट्रेस देना चाहूंगा। आजकल स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, जो भी हमारे मन में चिंताएं है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो होता ये है कि जब भी हमको स्ट्रेस होता है, भगवान ने हमको इस तरीके से बनाया है कि हमारे हार्ट में दो सिस्टम है। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जैसे कोई ब्लास्ट हो जाए, जी घबरा जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगी, और मैं भूख आभास उस जगह से, ऐसा इसलिए होता है जैसे तेज तेज धड़के खून की सप्लाई बढ़ जाए मसल तक और मैं भाग सकूं। अगर किसी मरीज को जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस हो रहा है, पर्सनल लेवल पे स्ट्रेस हो रहा है, किसी के घर में पैसे की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है, कोई भी दिक्कत है, इनसे हमारा थोड़ा थोड़ा बीपी पल्स बढ़ते रहता है बार बार, जो हमारे हार्ट को नुकसान करता है, हार्ट में रीमॉडलिंग करता है। सारा खेल हमारी खून की नलकियों करें। खून की नलकियों के अंदर एक चमड़ी होती है जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम अगर हेल्दी नहीं है तो प्रॉब्लम वाली बात है। एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाता है स्ट्रेस। अगर बीपी बढ़ेगा, पल्स बढ़ेगी, लाइफ स्टाइल है, पेशेंट स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहा, रात को नींद खुल रही है, तो इस तरीके से हमारे हार्ट का स्टाइल बढ़ जाता है किसी की ड्रेपिटी की वजह से। प्लस हार्ट में अगर माइनर ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज रप्चर कर जाते हैं, इसे बोलते हैं प्लाक रप्चर, जिसे अचानक से हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरी चीज, जो हमारी एंडोथेलियम है वो अनहेल्दी हो जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जो नुकसान करता है। चौथी चीज, प्लेटलेट, जो प्लेटें होती है जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है इस केस में। जैसे जो जिम जाते हैं ओवर स्ट्रेस कर लेते हैं बॉडी को, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, अचानक से जो जिम नहीं जाता, दोस्तों को देखे जिम जाना शुरू हुआ और वहां जाके 100-200 किलो उठा लिया, तो ये एकदम से बॉडी पे इतना स्ट्रेस पड़ गया जो जरूरी नहीं था उसको देना, तभी पेशेंट की अचानक मृत्यु हो सकती है।
1: अगर किसी व्यक्ति को दिल में तकलीफ महसूस हो तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
2: सर, पेशेंट को इमीडिएटली अगर फील हो कि उसको छाती में जकड़न या भारीपन महसूस हो, इसमें हम बहुत स्पेसिफिकली देखते हैं कि पेशेंट को एक पॉइंट पे दर्द नहीं होना चाहिए। कोई पेशेंट बोलता है सर मुझे गहरा सांस लेने में एक पॉइंट पे चुभन हो रही है, ये हार्ट का दर्द नहीं है। अगर पूरी पूरी छाती में डिफ्यूज, छाती में राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, जो कंधों में जाए, जो जबड़े में जाए, जकड़न, भारीपन, जलन या दर्द और सांस फूलना, घबराहट होना कि जैसे आज कुछ हो जाएगा, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और ज्यादा घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी, चिंता उसको मारेगी उस समय, उसे आराम से ऑटो के जहाँ पे भी वो है साथ में हेल्प के लिए बुला ले किसी को, और इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच के उसके वाइटल देखने चाहिए, बीपी, पल्स, और एक इमीडिएटली ईसीजी कराना चाहिए जो हमें काफी गाइड कर देता है। बट ये 61 साल के आदमी में हो रही है जिसको शुगर है, बीपी है, जो स्मोक कर रहे हैं, बड़े अंकल है जिनके पिताजी को भी हार्ट अटैक आया था, तब मैं घबराऊंगा, तब पेशेंट को इमीडिएटली भागना चाहिए डॉक्टर के पास, ईसीजी करानी चाहिए उस समय।
1: अब मैं आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा?
2: जी, मैं श्रोताओं को आपके द्वारा बताना चाहूंगा, मैं कुछ चीजों को ध्यान रखने के लिए बोलूंगा। अगर आप लोगों की उम्र 35-40 साल से ज्यादा है और आप पुरुष है और औरतें 50 के बाद, ऊपर से शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, कोई पुराना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, माता पिता, भाई बहन, दादा चाचा, ताऊ के लड़के, कजन में, परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक्स हुए हो, किसी की अचानक मृत्यु हुई हो, आप थोड़े मोटे हैं और आप कम चलते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्ट्रेसफुल लाइफ है बहुत ज्यादा, तो आपको एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए। हर 4 से 6 महीने अपना कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर का जांच करना चाहिए। ये 30 साल की उम्र से शुरू हो जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात और जो आखिरी बात मैं बताऊंगा, कुछ चीजें भगवान पे छोड़नी है, हमारे हाथों में सब कुछ नहीं है। आजकल दुनिया परेशान, सब लोग बहुत परेशान है, और शांति रखिए जीवन में और खुश रहिए अपने परिवार में, मतलब है ना।
1: जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेडियो विदस्ता के साथ जुड़े और आपने हमारी श्रोताओं के लिए वर्ल्ड हार्ट डे पर ये सारी जानकारी दे दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।

0: Up.
1: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
2: और मैं हूं विकास शर्मा।
1: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
2: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
1: निर्माता है विकास शर्मा
2: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
1: ये गीत हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
0: Your reaction.

मैं हूं वंश शर्मा, सिंगर सॉन्गराइटर एंड कंपोजर। मेरा एक नया गाना नए साल के आगमन पर रिलीज हुआ है और ये सॉन्ग मैं FM 90.0 रेडियो वितास्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉन्ग पसंद आएगा और आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलेगा। और इस गाने में संगीत दिया है आरवी ने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: कि सबकी यारी मेरा दिल जलाना।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विद अस्ता, हम सफर जिंदगी का। अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
2: दोस्तों बोझान FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हूं। बोझान रूजियो पनि पसंदीद बात।
3: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ।
4: ਕਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋ
3: ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ
4: ਅਸਲੇ ਪੌਣ ਪਟਾਕੇ
3: ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲਦਾਰ ਮੈਨੂੰ 90.0 ਮੇ

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: हाँ जी, सत श्रीकाल जी सारिया नूं। शब्द ने कमाईया ते इस शब्द नूं आवाज़ दित्ती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिया सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द की वीडियो जे एस कलवाना जी ने की है। इस वीडियो च काम करन वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदर राजोसन जी, निर्वैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस किया है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसीं इस शब्द की वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल पर जाके। शब्द का आनंद माणो, सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुले आम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहां तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहां खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ آنکھوں

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: ये सिर्फ गानों का सिलसिला नहीं, आपकी यादों का कारवां है। जब लफ्ज कम पड़ जाते हैं तो संगीत दिल की बात बयां कर देता है। दिलों के दरमियान कितनी भी दूरी क्यों ना हो, एक सुरीला नगमा उन फासलों को मिनटों में मिटा देता है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खूबसूरत श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा अपने शहर की धड़कन FM 90.0 MHz रेडियो विस्तार पर। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी हमसफर आरजे किरणी, और मेरे साथ इस खास सफर को यादगार बनाने के लिए मौजूद है,
1: और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपोली। रेडियो विदस्ता के सभी प्यारे अजीज और दिल के करीब

0: आए हैं और जो फरमाइशों का सैलाब आया है उसने हमारे दिल को छू लिया है। एक एक मैसेज पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था मानो हम सिर्फ लफ्ज नहीं पढ़ रहे बल्कि आप सबकी धड़कनों को सुन रहे हैं और साथ ही हम आपकी भावनाओं को हम महसूस कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा भारत जी, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आई आपकी फरमाइशें सिर्फ गानों की लिस्ट नहीं है, वो तो आपकी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे हैं। चाहे बचपन का वो जिगरी यार हो जिससे बरसों से बात ना हुई हो, कोई दूर बैठा सच्चा दोस्त हो, या फिर वो पहला पहला मासूम प्यार जिसकी याद आज भी चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आती है।
0: अरे वाह, क्या खूब कहा आपने। आप अपने किसी अपने को कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, लेकिन अल्फाज कम पड़ जाते हैं, तो चिंता मत कीजिए, रेडियो वितस्ता आपकी उसी अनकही आवाज को, आपकी उन भावनाओं को सीधे उन दिलों तक पहुंचाने का जरिया बनता है।
1: जी हाँ, हम यहाँ सिर्फ रेडियो पर आकर कोई गाना प्ले बटन दबाकर नहीं बजाते, हम यहाँ गानों के तारों से दो दिलों को जोड़ते हैं, दूरियों को मिटाते हैं और आपकी यादों में संगीतमय रंग भरते हैं, क्योंकि आपकी फरमाइश सिर्फ एक शो नहीं, ये हम सबका एक दूसरे से जुड़ने का एक जज्बाती पुल है।
0: तो बस फिर देर किस बात की, दिल के दरवाजे खोल लीजिए और तैयार हो जाइए इस संगीतमय सफर में बहने के लिए। आइए इस हफ्ते के फरमाइशों के इस पिटारे को खोलते हैं और लेते हैं आज की पहली फरमाइश, जो हमारे पास आई है बुलडाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है सहदेव दामोदर, ये सुनना चाहते हैं फिल्म सफर का गीत। गीत के बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है मुकेश ने। सहदेव दामोदर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, शलोक और दीपाली। आइए प्रस्तुत है आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमान।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव मंदेवर यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है रमबीर, जगमाल, फूल सिंह, शमशेर, अंगराज, विकास पंजेटा। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं एक हरियाणवी गीत जो फिल्म चंद्रवल से है और गाने के बोल है जीजा तू काला मैं गोरी गनी। इस गीत को आवाज दी है दिलराज गौर और विजय मजुमदार ने। पेश है ये फरमाइशी गीत।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाली श्रोता है विनय मोहन खारवा, मीनाक्षी अलोमा व डॉक्टर ईशानी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सती सावित्री से गीत। गीत के बोल है तुम गगन के चंद्रमा हो। इस गीत को आवाज दी है लता जी और मना डे ने। प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

अगली फरमाई जो हमारे पास आई है उस गीत के बोल है, चांद को ढूंढे पागल सूरज, और इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है अम्बाला कैंट से, भेजने वाले श्रोता है कैप्टन अमरजीत शर्मा, बलविंदर सिंह, कर्नल HS कौशल। लीजिए पेश है इनका पसंदीदा गीत।

श्रोताओ, प्रस्तुत है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म शोर से गीत। गीत के बोल है एक प्यार का नगमा है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। निसार सलमानी के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। पेश है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म यारा दिलदारा के गीत की, जिसके बोल है बिन तेरे सनम, और उस गाने को अपनी आवाज दी है उदित नारायण और कविता कृष्णामूर्ति ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। भेजने वाले श्रोता है सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शिंदे, प्रणय बसदी, प्रतिभा ताई गोंडाने। लीजिए पेश है इन सभी का ये पसंदीदा गीत।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है पिंड तेजा मोडी अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जसवीर सिंह संधू, वरनीत कौर, पवनीत कौर और सारा संधू परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म फकीरा से गीत। गीत के बोल है दिल में तुझे बिठाकर। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और साथ में ये लिख रहे हैं कि प्रोग्राम पेश करने वाले साहिबान को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमारी ओर से भी बहुत सारा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, हरियाणवी या पंजाबी गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हैं। आपको लिखना होगा अपना नाम, आप कहां से बोल रहे हैं, कौन से दोस्त और रिश्तेदार इस गाने को सुनना चाहते हैं और ये संदेश, ये मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी फरमाइश को कार्यक्रम में जोड़ देंगे और ये कार्यक्रम आप हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे सुनते हैं और इसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे होता है। तो भेजिए अपने मैसेजेस हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेता हूं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म प्रेम पुजारी का गीत। गीत के बोल है ताकत वतन की हमसे है। इस गीत को अपने शुरू से सजाया है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए प्रस्तुत है इनका ये पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म चा चा चा के गाने की, जिसके बोल है एक चमेली के मंडवे तले, इस गाने को अपनी आवाज से सजाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। इस गाने की फरमाइश हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर। साथ ही में मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोहेकर। लीजिए पेश है इन सभी का पसंदीदा नगमा।

सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जिगुड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन और मनराज। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म धर्मवीर से गीत। गीत के बोल है बंद हो मुट्ठी तो लाख की। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है आशा भोसले और लता मंगेशकर जी ने। प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म कटी पतंग से। इस गाने के बोल हैं प्यार दीवाना होता है और इस गाने को आवाज दी है किशोर कुमार ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है अम्बाला कैंट से अमिता की तरफ से, जो ये गाना डेडिकेट करना चाहती है आशी को। लीजिए पेश है ये डेडिकेटेड गाना।

सभी श्रोताओं को अब हम सुनाते हैं फिल्म वक्त से गीत। गीत के बोल है ऐ मेरी जोहरा जबी। इस गीत को आवाज दी है मन्ना डे ने। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है अंबाला कैंट से। भेजे वाले श्रोताएं मंगत राम, काका मिस्त्री और जगमाल सिंह। आइए प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: ये रातें, ये मौसम।

0: तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जय श्रोताओ, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अंबाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स, दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें। क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय।

0: आज है एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहे।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

हर पल को बनाइए खास सिर्फ बेहतरीन गानों के साथ। ट्यून इन कीजिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। बजते रहेंगे गाने, झूमते रहेंगे आप।

0: आपने ट्यूनिंग किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और जरूरी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सीधे हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे समाज की सेहत से जुड़ा है। वो है राष्ट्रीय पोषण माह 2026।
0: बिल्कुल अनु, यह इस साल का 9वां राष्ट्रीय पोषण माह है और इस बार इसकी थीम रखी गई है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। यह अभियान 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक पूरे देश में चलाया जा रहा है।
1: और श्रोताओं, इसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से किया। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है।
0: अनु, सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में आता है, इस बार ये थीम ही क्यों चुनी गई है?
1: देखिए भारत जी, इसके पीछे एक बहुत साफ सोच है। पहले जब भी पोषण अभियान की बात होती थी तो लोग यही समझते थे कि यह सिर्फ सरकार का काम है, आंगनवाड़ी केंद्र चलाना, वहाँ खाना बंटवाना, यह सब सरकारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साफ संदेश दिया है कि बच्चों का सुपोषण और सर्वांगीण विकास केवल सरकार का नहीं बल्कि परिवार, समुदाय और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है।
0: यानी यह सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए थीम में हमारी शब्द जोड़ा गया, यह बताने के लिए कि आंगनवाड़ी केंद्र किसी दूर की सरकारी इमारत नहीं बल्कि हमारे अपने मोहल्ले, हमारे अपने गांव का हिस्सा है और इसे बेहतर बनाना हम सबका काम है।
0: तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई आंगनवाड़ी केंद्र है तो उससे अपनाइए, वहां जाइए, वहां की जरूरतों को समझिए, यही इस थीम का असली संदेश है।

0: तो आइए जानते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी के लिए। भारत जी, अब बात करते हैं इस पूरी मुहिम में सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी साझा तो है पर शुरुआत सरकार को ही करनी होती है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो 2018 में शुरू हुआ पोषण अभियान, जिससे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कुपोषण के मुद्दे को जड़ से, यानी एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर हल करना, गर्भवती महिला से लेकर छोटे बच्चे और किशोरियों तक।
0: और इसी के साथ चल रहा है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसके तहत देश भर के करीब 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्र को हर साल करीब 40,000 की दर से सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।
1: इसका मतलब क्या है अनु, थोड़ा समझाइए हमारे श्रोताओं को।
0: इसका मतलब है बेहतर भवन, पीने के पानी की सुविधा, चालू हालत में शौचालय, हाथ धोने के लिए साबुन, बच्चों के खेलने और सीखने के लिए बेहतर माहौल। सरकार ने तो आंगनवाड़ी भवन निर्माण की लागत भी बढ़ाई है। पहले जो राशि 12,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि केंद्र मजबूत और सुविधाजनक बन सके।
1: और गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं ना?
0: जी हाँ, सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, और हर महीने एक जिला पोषण समिति की बैठक होती है, जिसमें प्रगति की समीक्षा होती है।
1: और डिजिटल निगरानी के लिए भी कुछ किया गया है?
0: बिल्कुल, पोषण ट्रैकर ऐप, यह मार्च 2021 से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है, जिसके जरिए हर आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों, बच्चों के वजन, लंबाई और पोषण स्थिति का रियल टाइम डेटा दर्ज होता है। आज इस पर करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत है।
1: यानी सरकार अब सिर्फ योजना बनाकर नहीं छोड़ रही, बल्कि उसकी निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही है।

0: आइए अब जानते हैं आंगनवाड़ी बच्चों के लिए कितनी सहयोगी हो सकती है। भारत जी, अब बात करते हैं कि यह सब बच्चों के लिए असल में कितना मायने रखता है।
1: देखिए अनु, आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ खाना बांटने की जगह नहीं है, ये 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और शुरुआती शिक्षा यानी प्रारंभिक बाल अवस्था विकास का सबसे पहला और सबसे अहम केंद्र है।
0: सही कहा, अगर किसी बच्चे को शुरुआती सालों में सही पोषण और देखभाल मिल जाए तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जीवन भर के लिए मजबूत नींव पर टिकता है। और यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी सक्षम आंगनवाड़ी, क्रेच और सखी निवास जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि माँ काम पर जाए तो बच्चा सुरक्षित हाथों में रहे।
1: और किशोरियों के लिए भी तो अलग से ध्यान दिया जा रहा है अनु।
0: जी हाँ, पोषण 2.0 के तहत पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में लाखों किशोरियों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
1: यानी ये सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं, बल्कि किशोर अवस्था तक फैला हुआ एक व्यापक ढांचा है।

0: आइए अब जानते हैं जन भागीदारी और समाज की भूमिका।
1: तो भारत जी, अब सवाल यह उठता है कि हम आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकते हैं।
0: बहुत कुछ अनु। सबसे पहले तो अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़िए। अगर वहाँ पानी, शौचालय या साफ सफाई की कोई कमी दिखे तो उसे स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाइए। बच्चों को नियमित रूप से केंद्र भेजिए। पोषण संबंधी जानकारी अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ बांटिए।
1: और यही तो पूरी थीम का सार है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जब तक समुदाय खुद आगे बढ़कर इसे अपना नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी योजनाएं पूरा असर नहीं दिखा पाएंगी।
0: बिल्कुल सही, यही वजह है कि इस साल के अभियान में जन भागीदारी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। रैली, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम, पोषण मेले, ये सब आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर परिवार इस मुहिम से सीधे जुड़ सके।
1: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि राष्ट्रीय पोषण माह 2026 सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सरकार, समाज और परिवार मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल अनु, आंगनवाड़ी केंद्र मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, हम सब की है।
1: पोषण केवल भोजन से जुड़ा विषय नहीं है, यह हमारे देश के आने वाले भविष्य और मानव संसाधन के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
0: बिल्कुल सही, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं, अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े और वहां उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी लें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहयोग करें। पोषण अभियान को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर अपने परिवार और आसपास जागरूकता फैलाएं।
1: क्योंकि जब हर घर सही पोषण पाएगा तभी हमारा भारत कुपोषण मुक्त और सशक्त बन पाएगा।
2: पोषण से खुशहाल बने हर बच्चा।
0: इसी जानकारी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सुनते रहिए आपका अपना और मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जो आपकी जिंदगी का हम सफर है और साथ ही आपके जीवन का प्रवाह भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: आना।
1: तुम जाओ अंजू, मैं यहीं ठहरता हूँ।
0: क्यों? उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो?
1: आखिर इंसान ही तो हूँ मैं।
0: अच्छा तो चलो, मैं तुम्हारे

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: कहिए क्या सुनेंगे आप?
3: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
2: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
3: कौन है वो?
2: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
3: कैसे?

0: आपने ट्यून इन किया है रेडियो इतस्ता, हम सफर जिंदगी का, और मैं हूं आपका मस्ती वाला रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। लेके आया हूं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों का एक नया एपिसोड। इस शो में मेरा साथ देंगे आरजे शिवानी।
1: नमस्कार, आप सभी सुनने वालों का स्वागत कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादों में। मैं आरजे शिवानी इस कार्यक्रम के सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: आज के इस शो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे जोड़ी की जिन्होंने हमारे दिलों में खास जगह बनाई है अपने दमदार संगीत से। जानेंगे उनके जिंदगी के बारे में और हम सुनाएंगे उनके बेहतरीन गाने प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों के सफर में। आज हम बात करेंगे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने अपने वरिष्ठ संगीतकारों की खिदमत की, उनका आशीर्वाद पाया, उन्हीं को टक्कर दी और फिर उन्हें पीछे छोड़ते हुए सभी स्थापित और ताकतवर फिल्म निर्माताओं को अपना मुरीद बना लिया। बॉबी, हीरो, सरगम, एक दूजे के लिए जैसी प्रेम कहानियों से इस जोड़ी का जादू युवाओं के सिर चढ़कर बोला। लक्ष्मीकांत लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया था, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। ये अलग बात थी कि लक्ष्मीकांत का बचपन विले पार्ले मुंबई का एक उपनगर की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया था। लक्ष्मी और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मी मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 सालों तक हुसैन अली से फिर बालमुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन का प्रशिक्षण लिया। बाद में हिंदी फिल्म की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुसनलाल भगत राम के हुसनलाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। इस प्रोग्राम में हम इनके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आइए सुनते हैं इनका एक बहुत ही संगीत भरा गाना फिल्म एक दूजे के लिए से 16 बरस की भाली उम्र।

0: 40 और 50 के दशक में हुसैनलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायकों ने भी उनकी शागिर्दी की। इस जोड़ी के चांद 1944 में बनाए एक दिल के टुकड़े हजार हुए गाने का कमाल यह था कि इसके बाद दर्द भरे गानों का दौर ही शुरू हो गया था। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारेलाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीत कार्यक्रम के दौरान हुई। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारेलाल वायलिन वादक थे और 20वीं सदी के महान वायलिन वादक यहूदी मेनोहिन के भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया।
1: साथ ही एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की, लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। वादकों को बहुत कम पैसे मिलते थे, इसलिए उन्होंने चेन्नई जाकर किस्मत आजमाई, मगर वहां भी हालत ऐसी ही थी। सो दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारेलाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। वो फिल्मों में संगीतकार नहीं बनना चाहते थे, उनका सपना वियना जाकर किसी सिंफनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया और दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो सपना सच करेंगे। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गाना जिसका संगीत इस महान जोड़ी ने दिया है और गाने के बोल है वो है जरा खफा खफा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और आज मैं आपके साथ हूं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादों में। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल अलग अलग सोच रखते थे। लक्ष्मीकांत संगीतकार बनना चाहते थे और प्यारेलाल बाहर जाना चाहते थे एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए। दोनों के सपने टकराए, उनके रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, मगर दोस्ती ने जोर मारा तो लक्ष्मीकांत जिद पर अट गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देख प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की यह दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में रफी किशोर के गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा की तरह 3.5 दशक तक अखंड रही।
1: लक्ष्मी प्यारे वादक से सहायक बने और फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। आखिर 1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस मणि उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें खूब समझाया कि छोटे बजट की फिल्म उनके करियर को खराब कर सकती है, मगर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मी प्यारे की गाड़ी चल निकली। 1964 में इस जोड़ी को राजश्री प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा रहे थे। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी और आखिर बाजी मारी दोस्ती ने। इस टीम ने अपने गुरु को पीछे छोड़ दिया था।
0: मामला यही नहीं रुका, जो मनोज कुमार और मनमोहन देसाई कल्याण जी आनंद जी को अपने फिल्मों का संगीतकार बनाते रहे, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अपनी फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी सौंप दी। संगीत के जानकार रहे शोमैन राज कपूर ने भी जयकिशन के निधन के बाद बॉबी से लक्ष्मी प्यारे को मौका दिया और उनका साथ प्रेम रोग तक चलता रहा। आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो इस संगीतकार जोड़ी की जिंदगी के साथ जुड़ा है और इन्होंने इस गाने का संगीत भी दिया है। सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से सलामत रहे दोस्ताना हमारा।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। प्यारेलाल का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी मां का देहांत बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनके पिता पंडित रामप्रसाद जी ट्रम्पेट बजाते थे और चाहते थे कि प्यारेलाल वायलिन सीखे। पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, वे घर घर जाते थे जब कभी भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता और साथ में प्यारे को भी ले जाते। उनका मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार पंडित जी उन्हें लता मंगेशकर के घर ले गए। लता जी प्यारे की वॉलिन वादन से इतनी खुश हुए कि उन्होंने उनको 500 रुपए का इनाम दिया, जो उस जमाने की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटों वॉलिन का रियाज करते और अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो के ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 85 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। अब उनके परिवार का पालन उन्हीं पैसों से होने लगा। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वें ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और 3 रुपए मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालातों ने भी उनके हौसले को कम नहीं किया। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेश की यात्रा करना उनका सपना था।
1: प्यारेलाल जी ये कहते हैं, मैंने संगीत सीखने के लिए एक संगीत ग्रुप मदरिगल सिंगर ज्वाइन किया, पर वहां मुझे हिंदू होने के कारण स्टेज आदि पर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था। वो लोग पारसी और ईसाई वादकों को अधिक बढ़ावा देते थे, पर मुझे सीखना था तो मैंने सब कुछ सहकर वहां पे टिका रहा। पर मेरे पिता ये सब अधिकतर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने खुद गरीब बच्चों को मुफ्त में सिखाना शुरू किया और उसका जिम्मा उठाया, और वो उन्हें संगीतकार नौशाद साहब के घर भी ले जाया करते थे। करीब 1500 बच्चों को मेरे पिता ने तालीम दी। बहुत कम लोग होते हैं जो जरूरतमंदों को अपनी शिक्षा देते हैं और उनको सही रास्ते पर डाल देते हैं। आइए सुनते हैं हम एक बहुत ही मनमोहक गाना जिसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ने दिया है, फिल्म एक दूजे के लिए, और गाने के बोल है तेरे मेरे बीच में।

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है रेडियो वितस्ता, उनके लिए मैं ये कह दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड की सुनहरी यादें, और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। प्यारेलाल जी का असली नाम प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा है, जिनको प्यार से प्यारेलाल के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1940 को गोरखपुर में हुआ था। इनकी कर्मभूमि मुंबई और कर्म क्षेत्र है संगीतकार। उन दिनों लक्ष्मीकांत पंडित हुसनलाल भगतराम के साथ काम करते थे। वो मुझसे 3 साल बड़े थे उम्र में। धीरे धीरे हम एक दूसरे के घर आने जाने लगे, साथ बजाते और कभी कभी क्रिकेट भी खेलते और संगीत पर लंबी चर्चाएं करते। हमारे शौक और सपने एक जैसे होने के कारण हम बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए। सी रामचंद्र जी ने एक बार मुझे बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा काम देने वाला हूं। वो लक्ष्मी से पहले ही इस बारे में बात कर चुके थे। चेन्नई में हमने 2.5 साल साथ काम किया। फिल्म थी देवता, कलाकार थे जैमिनी गणेश, वैजंती माला और सावित्री, जिसके हमें 6,000 रुपए मिले थे। ये पहली बार था जब मैंने इतने पैसे एक साथ देखे। मैंने इन पैसों से अपने पिता के लिए एक सोने की अंगूठी खरीदी, जिसकी कीमत 1200 रुपए थी।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को बेहतरीन गाने दिए। इनमें से कुछ है सावन का महीना फिल्म मिलन, दिल विल प्यार व्यार फिल्म शागिर्द, बिंदिया चमकेगी फिल्म दो रास्ते, महंगाई मार गई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, डफली वाले फिल्म सरगम, तू मेरा हीरो है फिल्म हीरो, यशोदा का नंदलाला फिल्म संजोग, चिट्ठी आई है फिल्म नाम, 1 2 3 फिल्म तेजाब। आइए सुनाती हूँ इन्हीं का एक मनमोहक गाना जो है महंगाई मार गई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से।
2: उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी, उसने कहा

उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी एक

0: लक्ष्मीकांत का जन्म 3 नवंबर 1937 में हुआ था। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देना पड़ा। बचपन के दिनों से ही लक्ष्मीकांत का रुझान संगीत की ओर था और वो संगीतकार बनना चाहते थे। लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की। इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत ने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आगे जाकर वादी यंत्र मेंडोलिन बजाने की शिक्षा बाल मुकंद इंदौरकर से ली।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में फिल्म जगत में अपने संगीत का लोहा मनवा कर ही माने। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के रूप में उन्होंने फिल्म मदारी, सट्टा बाजार, छलिया और दिल भी तेरा हम भी तेरे जैसी फिल्मों में काम किया। इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री की क्लासिकल फिल्म पारसमणि ने इनकी तकदीर ही बदल कर रख दी। फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। सभी सुनने वालों के लिए पेश करते हैं इनका एक और मशहूर गाना, जिसके बोल है, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो।

आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में एक बार फिर, जिसका नाम है बॉलीवुड की सुनहरी यादें। इस सफर में मैं भारत सोपोरी आपके साथ हूं और मेरा साथ दे रही हैं आज ये शिवानी। और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। 70 और 80 के दशक में LP का सामान्य अर्थ लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड के अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी लिया जाता था। इसका एक सीधा मतलब ये था कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड प्रदर्शित होते थे उनमें बहुतायत में LP ही बतौर संगीतकार मौजूद रहते थे। लक्ष्मीकांत कुडालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के इस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया। वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसे है। इस बारे में कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ही शायद अकेले ऐसे शीर्ष संगीतकार जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में बाकी जोड़ियों को पीछे छोड़ दिया था। LP की तुलना में हम शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद के सदाबहार युगल अवधान को याद कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मिलकर संगीत की साम्राज्य की ये प्रभावी तिकड़ी का फिल्म संगीत में अलग ही स्थान था। आइए हम ये चर्चा जारी रखते हैं और आपको सुनाते हैं इस मनमोहक जोड़ी का संगीत माय ये गाना जिसके बोल है हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के बतौर काम किया था। हंसता हुआ नूरानी चेहरा जैसे बेहद कर्णप्रिय व ऑर्केस्ट्रेशन से सजे गीत से बाबूभाई मिस्त्री की फिल्म पारसमणि 1963 से एकाएक मुख्य धारा में शामिल होने वाली यह संगीतकार जोड़ी जैसे प्रतिभा की प्रचुरता को अपने साथ तूफान की तरह लेकर आई। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के यहाँ साज बजाने का काम भी करते थे। लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारेलाल जुबिन मेहता से बुरी तरह प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया एवं सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था।
1: इसी तरह मदन मोहन वाली हकीकत के गीत मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था मैं प्रयुक्त वायलिन प्यारेलाल ने ही बजाया था। आज भी संगीत के अधिकांश जानकारों के मुताबिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बेहतर ऑर्केस्ट्रेशन की तमीज शायद ही किसी दूसरे संगीतकार के यहाँ मिलती है। आइए सुनते हैं इनका वो गाना जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ था। सुनते हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा।

कि प्यारेलाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्यारेलाल के पिता रामप्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन एवं पाश्चात्य म्यूजिक के नोटेशन सीखने जाया करते थे। उन्होंने भरतपुर के महाराजा किशन सिंह महाराज के यहाँ बैंड में ट्रम्पेट भी बजाई है और 5वें दशक की कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया है। वे व्यावसायिक रूप से उतने सफल संगीतकार नहीं हो सके, मगर अपने विलक्षण संगीत ज्ञान के चलते ज्यादातर संगीतकारों सी रामचंद्र, नौशाद एवं के दत्ता के यहाँ उनकी फिल्मी धुनों में बरसों तक ट्रम्पेट बजाया है। उन्हीं के संस्कारों और प्रभाव के चलते प्यारेलाल में एक बेहतरीन कंपोजर और ऑर्केस्ट्रा अरेंजर के गुण विकसित हो सके। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली एलपी की बनाई धुनों के माध्यम से बेहतर तरीके से दिखाई देती है। इसमें अतिरिक्त मिठास घोलने में उनकी शास्त्रीय संगीत पर मजबूत पकड़ और शास्त्रीय तालों का समुचित ज्ञान भी सहायता करता है। इसी के साथ सुनाते हैं इस मशहूर जोड़े का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत, जिसके बोल हैं पत्थर के सनम।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड की सुनहरी यादें और आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे थे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में। ये इस कार्यक्रम का अंतिम भाग है। ये कहा जाता है कि जब सारे दिग्गज संगीत निर्माता 60 के दशक के उत्तरार्ध में अधिक सफल तरीके से रुपहले पर्दे पर सक्रिय थे, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शुरुआती काम दिलाने एवं स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित होने में मदद करने के लिए लता मंगेशकर ने अहम भूमिका निभाई थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सार्थक अवधान की सूची भी शायद इसलिए बेहद लंबी होगी जिसमें सभी का जिक्र या नमोलेख कर पाना एक अध्याय की सीमा से परे की चीज लगती है। फिर मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब हम ये देखते हैं कि साधारण या विशुद्ध रूप से फ्लॉप किसी फिल्म में यदि लक्ष्मी प्यारे मौजूद हैं तो शर्तिया वहां एक गीत ऐसा अवश्य होगा जो ठीक ढंग से संगीत प्रेमियों के बीच में चर्चा में आया होगा।
1: यह भी संभव है कि उसकी लोकप्रियता रेडियो पर बजकर या रिकॉर्ड व कैसेटों की उल्लेखनीय बिक्री से पुख्ता तौर पर बनी होगी। इसी कारण वह गीत निश्चित ही अपनी फिल्मों की असफलता से निरपेक्ष रहते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत प्रतिभा के सामर्थ्य को व्यक्त करता रहा होगा। इसलिए हमें एलपी के संगीत पटल को पूरी तरह किसी फहरिस्त में बांधकर रख पाने में असमर्थ ही दिखाई देते हैं। फिर भी उनकी प्रतिभा का सबसे नायाब नमूना माने जाने वाली कुछ फिल्मों के नाम लिए जा सकते हैं जो एक अनूठा एलपी टाइप बनाती रही है।
0: इसके साथ ही इस प्रोग्राम का समय समाप्त हुआ चाहता है। इस प्रोग्राम का हम यही समापन करते हैं। दीजिए इजाजत, किसी और प्रोग्राम में आपके साथ फिर रूबरू होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।

वास्तव में जीवन चलना है, ढलना है, जलना है, रूहों का सफर है, इनके साथ जन्म जन्म के रिश्ते बंधे हैं। कोई चला गया तो कोई जाने की तैयारी में है। समा है 100 बरस का, पर पल भर की खबर नहीं।

क्यों तुम याद आते हो अक्सर इस खामोशी में। जमाने बीत गए, बदलते रहे मौसम, चांदनी रातों में चिनारों की ठंडी छांव तले आंखों में बसते हैं ख्वाब, और कभी इन ख्वाबों की ताबीर हुआ करते थे आप, पर बिछड़ते इन मौसमों के संग ख्वाब भी टूट गए और बिखर गई चांदनी।

पंछियों की टोलियां रवा हैं अपने सफर पे, और दूरानी सफर अपनी परवाज लिए आकाश की बुलंदियों को छूना ही ये अपना लक्ष्य मानते हैं। इनके लिए सरहदें कोई मायने नहीं रखते हैं, इनको बस उड़ने से मतलब है। बादलों में गुम हो जाना शायद इनका मकसद रहता है, फिर धीरे धीरे ये अपना सफर तय कर लौट आते ही जमीन पर इन पीले फूलों के खेतों में शबनमी बूंदों से नहा लेते हैं।

जाना है फलक पर अब, पर मिलोगी शायद तुम वहां, धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर। धड़कने ही उदास तुम्हारे बगैर, और चाहते ही बेअसर। अब यहां प्यार चुभता है क्योंकि फासले ही दरमियां, तभी मोहब्बत बेमाने है। सुरीली यादें ही जावेदां जो बह जाती हैं अक्सर मेरे साथ।

चांदनी रातों के बाद एक ऐसी ही सुबह का इंतजार रहता है जो मेरे लिए गुलाबी सुबह बन जाए। आओ, आओ तुम्हें इन बर्फीली हवाओं का एहसास कराएं। चल मेरे साथ कोहसारों के उस पार जहां पल भर के लिए अब मर जाएं।

दोस्त, आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आज के लिए बस इतना ही, चाहेंगे आपसे इजाजत।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम अलग अलग दिन तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज के प्रसारण पसंद आए होंगे, और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ पूरे दिन रहने के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:50। दोस्तों, वक्त ने धीरे धीरे दस्तक दी है कि अब आज की इस सुंदर मुलाकात को विराम देने की घड़ी आ गई है। आशा है आज का यह सफर आपके दिल को छू कर गुजरा होगा और आपके दिन को एक नई उमंग दे गया होगा। दोस्तों, जाने से पहले हम हर एक दिन एक विषय पर बात करते हैं और साथ में कुछ पंक्तियां आपको सुनाते हैं, कल के कार्यक्रमों का विवरण देते हैं और अपना नंबर भी आपको नोट कराते हैं। आज बात करते हैं एक बेहद खूबसूरत विषय पर। आज का विषय है दूसरों की निजता और उनकी निजी जिंदगी का सम्मान करना भी एक बड़ा गुण है। हर इंसान की अपनी एक अनोखी दुनिया होती है, अपने सपने, अपने फैसले और अपनी राह। जब हम दूसरों को उनकी अपनी गति से बढ़ने की आजादी देते हैं, उनकी पसंद और उनकी निजी बातों का सम्मान करते हैं, तो रिश्तों में एक खूबसूरत भरोसा पनपता है। ये समझदारी हमें और भी करीब लाती है, क्योंकि जहां सम्मान होता है वहीं प्यार अपने आप गहरा होता जाता है। जो लोग दूसरों की सीमाओं को समझते हैं और उन्हें अपनाते हैं, वो खुद भी शांति और सुकून से भर जाते हैं। किसी की राय मांगे बिना सुझाव ना देना, किसी की बातों को उसकी अपनी अमानत समझना और हर किसी को उसके अपने अंदाज में जीने देना, ये सब मिलकर रिश्तों को और मजबूत और सुंदर बनाते हैं। सच्चा प्यार वहीं खिलता है जहां सम्मान की जड़ें गहरी होती है। तो दोस्तों, आइए हम सब अपनों के प्रति यह प्यारा सा सम्मान अपनाएं, क्योंकि जब हम दूसरों की दुनिया को समझकर उसका आदर करते हैं तो हमारा अपना रिश्ता भी और गहरा और सुंदर बन जाता है। यह था आज का विषय। आशा करता हूं कि इससे कुछ जानकारी आपको मिली होगी। जाने से पहले आपको हर दिन 4 पंक्तियां सुनाता हूं। आज की पंक्तियां आप सभी के लिए समर्पित। वितस्ता कभी किसी से भेदभाव नहीं करती। वितस्ता कभी किसी से भेदभाव नहीं करती, हर किनारे को बराबर प्यार से सींचती संवारती। जो दे सम्मान हर किसी की अपनी राह को, जो दे सम्मान हर किसी की अपनी राह को, उसी की होती है सबसे गहरी और सच्ची चाहत बरती। उसी की होती है सबसे गहरी और सच्ची चाहत बरती। जी हां दोस्तों, जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 15 अक्टूबर 2026 बृहस्पतिवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत, और शारदा नवरात्र चल रहे हैं, आप भजन भी सुनेंगे इस भक्ति संगीत कार्यक्रम में सुबह 6 बजे से 7:05 पर। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय, एपिसोड 13 होगा अपना ध्यान रखना भगवान, यह होगा शीर्षक। कल की कहानी का पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 पहला प्यार एपिसोड 2 होगा, पेश करेंगे भारत सोपोरी। और 10 बजे होगा कार्यक्रम साज और आवाज, हम बात करेंगे नूपुर सिंह जी से, पेश करेंगे नरेश शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी। बृहस्पतिवार को आप दिन के 2 बजे सुनते हैं साइबर क्राइम अलर्ट एपिसोड 7। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, और 7 बजे आप सुनेंगे पहलू और गीत एपिसोड 10, पेश करेंगे आरजे किरनी। 8:30 कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है जगजीत सिंह की याद में। गजलों का यह कार्यक्रम होगा, और आशा करता हूं कि कल के कार्यक्रम आपको पसंद आएंगे। अपना फीडबैक, अपनी जानकारी हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010।
नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी आपके लिए तैयार की थी हमारे टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अन्नू ने। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपके मन में सम्मान और अपनेपन की एक नई और प्यारी सोच जगा गया होगा। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, लेता हूं आपसे विदा। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।